दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: आचार्य 90FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंडळी कसे आहात सगळे, सब ठीक है ना? अर्ज किया है हमारी महफिल में दिलवाले आते हैं, यहाँ पर स्वागत में हर किसी के लिए फूल ही बिछाए जाते हैं। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है ऑडियंस जी आपका, जो हरदम आचार्य 90FM के साथ रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, क्योंकि तब सचता है स्वाद के जायके का दरबार। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो फजीता, मींस आम का फजीता। इस रेसिपी को आम का फजीतो भी कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, इंदौर और गुजरात के कुछ हिस्सों में गर्मियों के सीजन में खास तौर पर बनाया जाता है। इसका टेस्ट एकदम खट्टा मीठा है। ये एक पारंपरिक व्यंजन है। मैंगो फजीता एक तरह की पतली कढ़ी या सूप जैसे होता है, जो पके हुए आम के गूदे और छाछ या पानी से बनता है। जब आम का रस निकाला जाता है, तब बचे हुए आम के छिलके और गुठलियों में लगे पल्प को पानी में धोकर और निचोड़कर मैंगो फजीता बनाया जाता है। आप इसे कंजूसी मत समझिए, इसे जुगाड़ कहते हैं। इस रस में दही, बेसन और भारतीय मसालों का तड़का लगाकर एक टेस्टी खट्टी मीठी मैंगो कड़ी बनाई जाती है। इस मैंगो फजीता के लेटेस्ट वर्जन में पके हुए आम के टुकड़े, शिमला मिर्च, प्याज और कुछ मसालों को भूनकर उन्हें साल्सा या रैप के रूप में तैयार किया जाता है। चलिए अब हम मैंगो फजीता बनाने की रेसिपी सुनते हैं। मैंगो फजीता बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पके हुए आम 2, हमें इसका पल्प निकालना होगा, कच्चा आम मींस कैरी 1, बेसन 2 बड़े चम्मच, छाछ या दही 1 कप, पानी 3-4 कप, तेल या देसी घी 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, राई 1 चम्मच, हींग 1 चुटकी, हरी मिर्ची 1, अदरक का पेस्ट लगभग आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। इससे इस फजीतो का रंग लाल होगा। ब्राउन गुड़ या चीनी स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच गुड़ ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए नमक स्वाद के अनुसार, अप्रोक्सीमेटली 1 चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया 2 चम्मच गार्निश के लिए, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। अब हम इस टेस्टी मैंगो फजीता की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले पके और कच्चे आम को आप अच्छे से धो लीजिए। फिर क्या करना है? तो भाई, इन आमों का छिलका हमें निकालना है, लेकिन उसके पहले पके हुए आम को आप 1-2 घंटे के लिए सादे पानी में भिगोकर रख दीजिए। ऐसा करने से उसकी हीट कम हो जाएगी। 1-2 घंटे के बाद अपने हाथ या फिर ब्लेंडर की मदद से हमें पके हुए और कच्चे आम का पल्प मींस आम का गूदा निकालना है। मैंगो पल्प निकालने के बाद उसकी गुठलियों को आप फेंके नहीं, हमें उन गुठलियों को भी यूज करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक घोल मींस बैटर तैयार करना है। इसके लिए एक बड़े बोल में मैंगो पल्प लीजिए, फिर उसमें डालिए थोड़ा सा बेसन, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। दूसरे बोल में दही को या छाछ को चर्नर की मदद से फेंट लीजिए, इससे उसके अंदर की गुठलियां निकल जाएंगी और दही या छाछ एकदम स्मूथ बनेगा। अब इस फेटे हुए दही या छाछ को मैंगो पल्प वाले उस बैटर में ऐड कीजिए। इस बैटर को आप अच्छे से मिला लीजिए, अदरवाइज बेसन की गांठ कहीं पर रह जाएगी, इसका आप जरा ध्यान रखिए। जब तक इस बैटर को हम अच्छे से मिला ले, तब तक आप सुनिए स्वाद का जायका इस शो का पहला सॉन्ग।
1: अरे है ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा बैटर तो तैयार हो गया है, अब हम मसाला भूनेंगे। इसके लिए आप एक कढ़ाई में तेल या देसी घी को गर्म कीजिए। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तेल हो गया है गर्म और इसमें हम डाल रहे हैं राई मीन्स मस्टर्ड सीड्स। राई को चटकने दीजिए। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, साथ ही थोड़ा सा हींग भी। फिर हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। वाह क्या बात। अब इसमें डालिए अदरक पेस्ट। अदरक पेस्ट को लो फ्लेम पर भून लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 मिनट के लिए। अब इस तड़के में डालिए हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और आम की गुठलियां भी। फाइनली इसमें डालिए आम और बेसन का तैयार घोल। इसे उस तड़के में डालते ही खुशबू सी बिखेर जाएगी आपके किचन में। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। आगे क्या करना है? फिर इसमें ऐड कीजिए गुड़ या चीनी और थोड़ा सा नमक। अब इस मिश्रण को इस कढ़ी को हाई फ्लेम पर हमें पकाना है। लगभग 2 मिनट के बाद इस कढ़ी में उबाल आना शुरू हो जाएगा। उबाल आने के बाद आप चूल्हे की फ्लेम को स्लो कीजिए मींस लो फ्लेम पर इस कढ़ी को उबालिए, अदरवाइज वो उबल के नीचे गिर जाएगी। इस दौरान बीच बीच में कढ़ी को चलाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमने उसमें जो बेसन डाला है उस बेसन का कच्चापन दूर होगा। लगभग 10 मिनट के बाद हमारा मैंगो फजीता हो गया है तैयार और इसे डेकोरेट करने के लिए हम हैं एकदम तैयार। तो भाई आप लीजिए एक सुंदर सा सर्विंग बोल और उसमें बड़ी नजाकत से डालिए मैंगो फजीता। इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम कोतमीर मीन्स हरा धनिया बारीक काटकर इस पर सजाएंगे। अब गर्मा गर्म ताजे चावल या फिर रोटियों के साथ आप इस टेस्टी और यम्मी मैंगो फजीता का लुत्फ मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस मैंगो फजीता की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है टेस्टी नगीना मैंगो फजीता। खट्टे मीठे स्वाद वाला एक अनोखा सा नगीना, नाम खट्टे मीठे स्वाद वाला एक अनोखा सा नगीना, आम की गुठलियों वाला टेस्टी मैंगो फजीता। दही के साथ मसाले और थोड़ा सा बेसन मींस स्वाद के जायके का यमी यमी स्टेशन। पारंपरिक व्यंजन है आम की गुठलियों की कढ़ी, मैंगो फजीता बनाकर खाने की रंगत बढ़ी। दही बेसन और आम का जायकेदार संगम, इसे खाकर बजेंगे आपके मन में मृदंग। कितना इंटरेस्टिंग है हमारा देसी खाना मैंगो फजीता के साथ। ऑडियंस जी आप सुनिए हमारा अगला गाना।

के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। मैंगो फजीता तो हमने बना लिया, फिलहाल मार्केट में मैंगो, चीकू और वाटरमेलन जैसे समर सीजन स्पेशल फ्रूट्स दिख रहे हैं। एक और फ्रूट है जो अफ्रीका से होकर हमारे देश में आया और यहीं का हो गया। आयुर्वेद और सदियों पुराने खान पान में इसकी खेती का जिक्र मिलता है। इस फ्रूट के नाम वाला एक फेमस परफ्यूम भी है। ये फल गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और भरपूर पानी देता है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मस्क मेलन मीन्स खरबूजा इस फल की। विटामिन ए और सी से भरपूर इस मस्क मेलन के सेवन को आप अपनी ब्यूटी रेजिम में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि मस्क मेलन खाने से हमारा वेट कंट्रोल में रहता है। आज की हमारी अगली रेसिपी का नाम है खरबूजा हलवा मीन्स मस्क मेलन हलवा। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी आप इस गर्मी के मौसम में जरूर बनाइए और अपनों के साथ शेयर भी कीजिए। इसे शेयर करने से इसकी मिठास और भी बढ़ेगी। मस्क मेलन हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: खरबूजा मीन्स मस्क मेलन 1/2 किलो, मिल्क पाउडर 2 बड़े चम्मच, इलायची पाउडर 1 चुटकी, चीनी यानी कि शक्कर 2 बड़े चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 बड़ा चम्मच, केसर के धागे 5 या 6, पानी 1/2 कप, देसी घी 2 चम्मच। फिर हमें चाहिए मिल्क मसाला या तो फिर मिक्स ड्राई फ्रूट्स लगभग 2 चम्मच। हमारे इंग्रेडिएंट्स तो रेडी हैं फिलहाल, लेकिन तब तक आप एक गाना सुनिए। जब तक आप गाना सुन रहे हैं, मैं मस्क मेलन का छिलका निकालकर उसको टुकड़ों में काटती हूँ।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। मस्कमेलन के टुकड़े हो गए हैं तैयार और हलवा बनाने की रेसिपी सुनने हम हो रहे हैं एकदम बेकरार। लेकिन रेसिपी सुनने से पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखना है। 15 मिनट के बाद इन ड्राई फ्रूट्स को पतले टुकड़ों में काटना पड़ेगा। ये हो गया मस्कमेलन हलवा के डेकोरेशन का सामान। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले मस्कमेलन के टुकड़ों को आप मिक्सर में पीस लीजिए। ऐसा करने से मस्कमेलन का एक फाइन पेस्ट बनेगा जो एकदम गाढ़ा और स्मूथ होगा। अब हमें लेनी है एक मोटे बेस वाली कढ़ाई। उस कढ़ाई में मस्कमेलन का पल्प डालिए और गैस को ऑन कीजिए। हमें लो फ्लेम पर इस मस्कमेलन पल्प को चलाना है, धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है। बीच बीच में चम्मच से इसे मिक्स कीजिए, नहीं तो ये जल सकता है। लगभग 10 मिनट के बाद इसमें डालिए मिल्क पाउडर और शक्कर। इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। जब तक शक्कर घुल जाए तब तक आधा कटोरी पानी में कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स कीजिए। इस तैयार घोल को गैस पर पकते हुए मस्कमेलन हलवा में ऐड कीजिए। इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें डालिए देसी घी। इससे क्या होगा? तो भाई, मस्कमेलन हलवा में घी डालने से उसका टेस्ट निखर आएगा, साथ ही हलवा को एक चमक भी मिलेगी। लो फ्लेम पर इसे पकाना है। अब आप डालिए केसर और खुशबूदार इलायची पाउडर। इसे डालने से मस्कमेलन हलवा में स्वाद का जायका ऐड होगा। मस्कमेलन हलवा को आप अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए। जैसे ही ये मिश्रण कढ़ाई से छूटकर गोला टाइप बनने लगे तब आप गैस को बंद करें। उसके बाद क्या करें? थम्बा, आप तो घाई घाई करने लगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। मस्क मेलन हलवा अब हो गया है तैयार और इसे डेकोरेशन करने के लिए मैं हूं बेकरार। अब आगे सुनिए। एक सुंदर सी कटोरी लीजिए, उस कटोरी में बड़े प्यार से डालिए मस्क मेलन हलवा। ये इतना टेम्पटिंग है कि टेस्ट करने के लिए वेट करना थोड़ा मुश्किल ही होगा आपके लिए। अरे भाई, सब्र का फल मीठा होता है। वेट, इस पर आप चाहें तो मिल्क मसाला को स्प्रिंकल कीजिए या फिर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन बनाइए। उसके बाद इस मस्क मेलन हलवा का भगवान को भोग लगाइए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। फिर एकदम प्रसन्नता से इस मस्क मेलन हलवा का लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस मस्क मेलन हलवा की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है सुनहरा मस्क मेलन। सुनहरा सा एक फल, नाम उसका खरबूजा। इसका हलवा खाकर आपको आएगा मजा। इसे हेल्दी बनाने इस्तेमाल किया मिल्क पाउडर। टेस्ट करके इसे मुंह से निकलेगा वाव, वो भी एकदम लाउडर। इसके नाम में है खुशबूदार मस्क और रूप है ऐसा जैसे सुनहरी शाम मींस डस्क। खाकर हेल्दी खाना सेलिब्रेट करेंगे समर। हमारा हिंदुस्तानी खाना पाएगा दुनिया में अव्वल नंबर। हेल्दी खाना खिलाकर ऑडियंस का रखूंगी ख्याल। हमारा देसी खाना बनेगा दुनिया के लिए मिसाल। कितना अनोखा सा है ये गर्मियों वाला फल, इसे खाकर बनाइए मीठा हर पल। मस्क मेलन नाम का सुनहरा हलवा, किचन में एंट्री कीजिए और दिखाइए अपना जलवा। बनाकर अनोखे व्यंजन करेंगे हम कमाल। आचार्य 90 FM के ऑडियंस संग खाना मस्ती और धमाल। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे गर्मियों के बाद झमाझम बारिश का सीजन शुरू होगा और इसे सेलिब्रेट करने आपको हमारे स्वाद के जायका इस शो से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि बारिश स्पेशल रेसिपीज को हमारे प्यारी ऑडियंस के साथ शेयर करने हमने आपके साथ अपॉइंटमेंट रखी है। हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे हमें आपसे गुफ्तगू कुछ बातें शेयर करनी होती है, जिसमें हम लोकल सीजनल और कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज हमारे प्यारे ऑडियंस के साथ साझा करते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर लिखिए, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा जनाब, इससे हमारी दोस्ती एकदम पक्की होगी। इस नोट पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हर सीजन को खाना खिलाकर सेलिब्रेट करना मतलब नेचर यानी कि प्रकृति के अनेक रूपों की सराहना करने जैसे है। आम का मौसम सेलिब्रेट करने हमने कई सारी रेसिपीज बनाई, साथ ही क्यूकम्बर, चीकू और मस्क मेलन के साथ स्वाद का जायका बखूबी निभाया कि नहीं? जी बिल्कुल सही तरीके से निभाया। हमारे भारत देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उससे ज्यादा वैरायटी वाली टेस्टी रेसिपीज भी हमने बनाई हैं और खिलाई भी हैं। भाई आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो फजीता। ये एक प्रकार की बेसन वाली खट्टी मीठी कढ़ी है। दही, बेसन, आम और कुछ मसालों को मिलाकर हमने टेस्टी और टैंगी फ्लेवर वाला मैंगो फजीता बनाया। फिर बारी आई मस्क मेलन मीन्स खरबूजा से बनी एक स्वीट रेसिपी की। इसका नाम मस्क मेलन हलवा था। पका हुआ खरबूजा, मिल्क पाउडर, घी और शक्कर को मिलाकर बन गया मस्क मेलन हलवा। केसर और इलायची पाउडर यूज करके हमने इस स्वाद के जायके को निभाया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बिना तले हम जायकेदार व्यंजन बना सकते हैं। हमारी खाद्य संस्कृति को हम हमारे इस स्वाद का जायका शो के माध्यम से दोबारा जानने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। इस खाने खिलाने की कोशिश में आपका साथ हमारे लिए मायने रखता है। कहते हैं कि जब आहार गलत हो तब दवा किसी काम की नहीं होती है और जब आहार सही हो तब दवा की कोई जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि स्वच्छ खाना है सेहत का खजाना। इसलिए हमेशा खाए घर का बना शुद्ध खाना। भाई घर का भोजन तंदुरुस्ती बनाए और बाहर का भोजन रोगी बनाए। तभी तो सात्विक भोजन का सेवन ज्यादा करना चाहिए। मेडिटेशन का बनाए नियम, योग करे, सैर करे, जंक फूड से रहे दूर, तब जरूर छा जाएगा खुशियों का आलम। अब हो गया है समय आपसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

आपकी आहट से दिल में खुशी छाई है, जैसे बंजर जमीन पर बहार आई है। हम तो कब से इस पल के इंतजार में थे, आपका आना हमारे लिए सौगात लाई है। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? एंजॉयिंग मैंगो सीजन? कोई झूठ नहीं बोलेगा, सच बताना, आपको पके हुए आम अच्छे लगते हैं या कच्चे आम अच्छे लगते हैं? वैसे आम कच्चा हो या पक्का हो, है तो आम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक महाराष्ट्रियन रेसिपी जिसे कच्चे आम से बनाया जाता है। टेस्ट में खट्टी मीठी लगने वाली ये रेसिपी समर सीजन स्पेशल रेसिपी है। कच्चा आम मींस कैरी के टुकड़े, गुड़, मिर्ची पाउडर और तड़का लगाकर आप इसे 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी का नाम है कैरीची आमटी मींस कच्चे आम की खट्टी मीठी दाल। आप इसे चावल के साथ मजे से खा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए कच्चे आम की खट्टी मीठी दाल की रेसिपी सुनने। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मीडियम साइज कच्चा आम, ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट एक कटोरी, मेथी दाना पाव चम्मच, ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। राई एक छोटा चम्मच, धनिया बीज एक छोटा चम्मच, ब्राउन गुड़ एक बड़ा चम्मच, तड़का लगाने के लिए तेल 4 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, हींग चुटकी भर, मिर्ची पाउडर 1.5 चम्मच, बारीक कटा हुआ धनिया 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच या स्वादानुसार। तो अब हम सुनते हैं इसे तैयार करने की रेसिपी। कच्चे आम को काटकर आप इसके मीडियम साइज के टुकड़े कर दीजिए। फिर कद्दूकस मींस ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट में धनिया सीड्स और राई डालकर उसका फाइन पेस्ट बनाइए। फिर तेल गरम कीजिए। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, कोंकणी या गोवन स्टाइल खाना बनाते समय कोकोनट ऑयल को ही यूज कीजिए क्योंकि कोकोनट ऑयल से उस खाने की खुशबू और टेस्ट दोनों ही एनहांस होते हैं। कढ़ाई में जो गरम तेल है उसमें पहले राई, हींग, मेथी से खुशबूदार तड़का लगाइए, साथ ही ढेर सारा प्यार भी डालिए। वैसे नारियल का तेल जल्दी गर्म होता है, इसको आप ध्यान में रखिए वरना वो जल जाएगा। फिर उस तड़के में कच्चे आम के टुकड़े डालिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें मिर्ची पाउडर, गुड़ और 1.5 कप पानी ऐड कीजिए और उबलने के लिए रख दीजिए। फिर उसमें नारियल और मसालों से मिक्सर में जो पेस्ट बनाया था उस कढ़ाई में ऐड कर दीजिए। अब नमक डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट तक ढक्कन लगाकर उसे पकाइए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। अब इस गर्मा गर्म और खट्टी मीठी दाल को बारीक कटे हुए धनिया से डेकोरेट कीजिए। क्या बात, ताजे और गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसका लुत्फ उठाइए। वैसे ऐसी खट्टी मीठी चीजें समर सीजन में कम से कम एक बार तो जरूर ट्राई करनी ही चाहिए। कहते हैं कि यूं तो आम लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है जनाब, लेकिन ये मत भूलिए कि साल में एक सीजन आम का भी आता है। वही कच्चे आमों के दिन गांव में है, वही नर्म छांव के दिन गांव में है, मगर ये शहर की अजब उलझने हैं। न तुम गांव में हो न हम गांव में हैं। आचार भी है, आमरस भी है, बर्फी भी, श्रीखंड भी है, जान भी है, दिल भी है। बड़ी अच्छी लगती है हमें आम की हर महफिल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। हमारे प्यारे ऑडियंस से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों को आम से इतना प्यार है कि गर्मी का सीजन जल्दी आ जाए इसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं? वैसे गर्मियां आने पर ये नजारा होता है कि हर गली और चौराहे पर सिर्फ आम ही दिखाई देते हैं। क्या शहर और क्या गांव, हर जगह सिर्फ आम ही बिकेंगे क्योंकि आम आम लोगों से दूर नहीं होता है।
इसे खाने में मजा भरपूर होता है। वैसे आज हम पद्म पुरस्कार से सम्मानित एक ऐसी सिंगर की बात करेंगे जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम मेंशन कराया है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, ऐसे कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स की ये हकदार है। यहाँ पर बात हो रही है आशा ताई के नाम से मशहूर रह चुकी हम सबकी फेवरेट आशा भोसले की। उन्होंने सोलो, ड्यूएट और कोरस गाने गाए हैं। इस स्पेशलिटी की वजह से ही उन्हें मोर देन 100 अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनकी आवाज आज भी लोगों के कानों में नहीं बल्कि दिलों में गूंजती है। आशा ताई ने महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड 18 बार जीता है। ये अपने में एक रिकॉर्ड है। संगीत की दुनिया में अपने अनोखे योगदान के लिए आशा ताई जानी जाती है। ये सब उनके 80 साल के ज्यादा लंबे म्यूजिकल करियर में की गई मेहनत का नतीजा है। आशा ताई ने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। अपनी सुरीली आवाज और अनगिनत सुपरहिट सॉन्ग्स के जरिए उन्होंने म्यूजिकल लवर्स के दिलों पर राज किया है। दुनिया की सबसे महान फीमेल सिंगर्स में आशा ताई का नाम शामिल है। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 11,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उनकी आवाज ने पीढ़ियों को हर मूड, खुशी, दिल टूटने, उत्सव और भक्ति में साथ दिया है। आशा ताई का बचपन मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के सांगली में गुजरा है। 8 सितंबर 1933 को जन्मी हमारी आशा ताई मंगेशकर परिवार से ताल्लुक रखती है। मशहूर सिंगर इंडियन नाइटिंगेल लता दीदी मंगेशकर की आशा ताई छोटी बहन है। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने उन्हें बचपन से संगीत सिखाना शुरू किया था। अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आशा ताई ने कम उम्र में ही गाना शुरू किया। एक मराठी फिल्म में गाना गाकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अपनी दमदार आवाज के दम पर आशा ताई ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। आशा भोसले को उनके साहसी गायन और वेस्टर्न म्यूजिक के साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कॉम्बिनेशन के लिए याद किया जाता है। हमें नाज है भारत की इस बेटी पर जिन्होंने इतने वर्षों तक अपना नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। अब वक्त हो गया है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइए, हम आपसे और भी बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो।

0: हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाई जाती हैं। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। फिल्मी दुनिया की अनोखी अदाकारा हमारी आशाताई, जैसे भारत की गान कोकिला लता दीदी की परछाई, सारी दुनिया में नाम कमाया, माध्यम था संगीत, लोगों के जहन में हमेशा रहेंगे इनके मधुर गीत। गर्व से दोहराएंगे हम आपकी म्यूजिकल दास्तान, विश्व में बनाया रिकॉर्ड आपने, इसलिए खुश है हिंदुस्तान। आपके गुजरने से रो रहा आसमान, हर मूड को देखकर सुर गाई सुरीली दास्तान। आशा और लता ने बनाई सुरों से अलग सी पहचान, अब आपके जाने का हमें है अफसोस, संगीत जगत अब लगता है जैसे सुना और ओस। हमेशा याद रखेंगे आप ही का तराना, दिल से कहती हूँ शुक्रिया फॉर अनोखा म्यूजिकल जमाना। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे शो का नाम है स्वाद का जायका। आज की हमारी अगली रेसिपी है आम की फिरनी, मींस मैंगो फिरनी। मौसम भी है, दस्तूर भी आम की बात को और खास करते हैं। वैसे फिरनी पर्शियन ओरिजिन की एक शाही मिठाई है। इसे पीसे हुए चावल, दूध, चीनी, केसर और इलायची से बनाया जाता है। ट्रेडिशनली इसे मिट्टी के बर्तनों में, मींस शिकोरों में ठंडा परोसा जाता है, कुल्हड़ में परोसा जाता है। वैसे ये मैंगो फिरनी समृद्धि और शाही स्वाद का प्रतीक है। ये मिठाई मोस्टली रमजान में बनाई जाती है, लेकिन आचार्य 90 FM के प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे समर सीजन स्पेशल रिवाज समझकर बना रहे हैं। खीर बनाते वक्त हम अक्खा मीन साबुत चावल यूज करते हैं, लेकिन फिरनी बनाते समय पीसे हुए चावल का उपयोग होता है और इस वजह से फिरनी का टेक्सचर मलाईदार और गाढ़ा होता है, थोड़ा कस्टर्ड टाइप होता है। इसे बनाने के लिए लगभग 1 घंटा लगता है और इसे खाने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही काफी है। तो चलिए हम अब इसकी रेसिपी सुनते हैं। मैंगो फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल 50 ग्राम, इन्हें अच्छे से धोकर आधा घंटा पानी में भिगाइए, फुल फैट मिल्क मतलब दूध 1 लीटर, मैंगो पल्प आधा कप, अगर अल्फोंसो मैंगो को यूज कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, शक्कर 100 ग्राम, इलायची पाउडर 2 चुटकी भर, काजू पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, और ये ऑप्शनल है, कटे हुए मैंगो पीसेस डेकोरेशन के लिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसे बनाने के स्टेप्स सुनते हैं। सबसे पहले भिगोए हुए चावलों से पानी निकालिए। अब इन चावलों को दरदरा मींस मोटा मोटा पीस लीजिए। यहाँ आप मिक्सर को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे पल्स मोड पे चलाइए। फिर भारी बेस वाली एक कढ़ाई में दूध गर्म करें और उसमें उबाल आने दें। अब पीसे हुए चावलों को उस उबलते हुए दूध में डालें। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाइए। थोड़ी देर बाद चावल पक जाएंगे और दूध भी गाढ़ा होने लगेगा। फिर उसमें शक्कर और इलायची पाउडर डालकर 2 मिनट फिर से पकाइए। अब गैस बंद कर दीजिए, वो तैयार मिश्रण थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। अब उसमें मैंगो पल्प मिक्स कीजिए। अब इस फिरनी को मिट्टी के कुल्हड़ में निकालिए, इस पर मैंगो पीसेस और ड्राई फ्रूट से सजावट कीजिए। अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सर्व करते समय इसे ठंडा ही परोसिए। अब आप सबकी खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है फिरनी। फिरनी को कुल्हड़ में परोसा और नाम दिया शाही, इसका अनोखा स्वाद ही देगा आम होने की गवाही। कुल्हड़ की मिट्टी से बढ़ता है इसका स्वाद, खाने वाला हर कोई इसे हमेशा रखेगा याद। फिरनी को खिलाकर बढ़ाओ दोस्ती यारी, मेरे देश की मिट्टी से फिरनी की टेस्ट लगे और भी प्यारी। खाना शेयर करने से पराए भी होंगे अपने, जब एक होगा भारत तब सच होंगे सपने। स्वाद का जायका शो पर बनाकर लजीज खाना, मन होगा खुश जब सुनोगे कोई गाना। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे मैंगो के सीजन में हम आम बातें करते ही हैं, लेकिन आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आसमान में दिखने वाले बादलों के भी टाइप्स होते हैं? वैसे क्लाउड मींस बादल, राइट? जब गर्म पानी भाप या स्टीम बनकर ऊपर आसमान में पहुंचता है तब बादल बनते हैं, और बादलों को मेघ, घटा या जलद इन नामों से भी जाना जाता है। अब हम बादलों के प्रकार के बारे में सुनते हैं। ऊंचाई मींस उनकी हाइट के आधार पर उनके नाम क्या होते हैं, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। जो बादल धरती से 6500 फीट तक की ऊंचाई पर होते हैं उन्हें लो क्लाउड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये बादल भूरे रंग के होते हैं और पूरे आसमान को ढक देते हैं। फिर आते हैं मीडियम क्लाउड्स, जो 6,500 टू 20,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्टो स्ट्रेटस, ये ब्लू या ब्लू ग्रे कलर के होते हैं। ये सूरज की रोशनी को ढक देते हैं। इन्हें बादलों की चादर भी कहा जाता है। वैसे थर्ड टाइप के हाई क्लाउड्स, जो 20,000 फीट से ऊपर होते हैं, इन्हें सीरस क्लाउड्स कहते हैं। दिखने में ये बर्फ के क्रिस्टल के होते हैं। ये बादल ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये बारिश वाले बादल नहीं है। है ना इंटरेस्टिंग बात? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। अगर जीवन का सार समझना है तो एक बार फुर्सत से बादलों को देख लेना। सुख और दुख का आना और जाना बादलों की हलचल से समझ लेना। जिंदगी के हर मोड़ पर देखे हमने मुकाम, कभी मिला दुख तो कभी खुशी का पैगाम। एक ही जगह रुकना नहीं किसी के भी बस में, बदलाव को रोकना नहीं हमारी नस में। जनाब जिंदगी में आएंगी मुश्किलें, क्योंकि यहाँ जीना नहीं आसान। एकजुट होकर भारतवासी बनेंगे नेक इंसान। औरों पर रोक जमाने का नहीं हमें शौक, लेकिन देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक हैं बेखौफ। दुनिया में सबसे अलग और अव्वल मेरा भारत देश, चमकेंगे हीरे की तरह क्योंकि हर भारतवासी है विशेष। मैं हूँ RJ भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन
1: रेडियो। तो क्या करते हजार

0: क्या हुआ?
1: आशीष चला गया और मैं उसे ठीक से बाय भी नहीं बोल पाई।
0: क्यों?
1: क्योंकि जाने से पहले मैंने उसे झगड़ा कर दिया।
0: तो रोने से क्या होगा, जहाँ वो गया है वहाँ जाओ और मना लो।
1: सच?

वैसे गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और बारिश का मौसम आने में अभी थोड़ा और टाइम है, इसीलिए हमें कुछ वक्त इंतजार करना होगा। वैसे हर मुश्किल हमारे अंदर की ताकत का इम्तिहान लेने आती है, उसे डरने का चांस मत दीजिए। यहाँ पर वैसे चुप रहने का ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं जनाब। चुप रहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप जानते हैं कि आप सच को साबित करने की कोशिश करें, उससे कुछ नहीं बदलेगा। उस वक्त चुप रहना ही सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। कई बार हम ये देखने में बिजी हो जाते हैं कि ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, और इस टेंशन में हम ये देखने का टाइम नहीं निकाल पाते कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है। इसलिए अब से खुद को समझिए, खुद की पहचान बनाने की सोचिए। दूसरों के जैसा बनने में अपना टाइम वेस्ट करने से क्या होगा? हमारे हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसे हैं क्या? नहीं ना। हर किसी की अपनी पहचान, अपना वजूद होता है। वेस्टर्न कल्चर को हर बात में कॉपी करना ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जिसे अपनाकर हम अपनी खास पहचान बना ही सकते हैं। सिर्फ पहचान बना सकते हैं ऐसे नहीं, अपने भारतीय होने पर दुनिया में मशहूर भी हो सकते हैं, क्योंकि जहां हम नहीं होते वहां हमारे अच्छे और बुरे गुण हमारी मौजूदगी बताते हैं। मैं हूं आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो मिरर की तरह काम करता है, मींस आईने की तरह। हम इसमें जो एनर्जी भेजते हैं वही एनर्जी इसमें से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास लौट कर आती है। तो क्यों ना हम सब मिलकर कुछ ऐसा कमाल करें कि पूरी दुनिया में हमारे नाम का ही डंका बजे। वैसे हमारे जीवन की कठिनाइयां हमें परेशान करने ही आती हैं, ताकि परेशान होकर हम उस सिचुएशन से बाहर निकले। झूठ कहकर किसी की लाइफ को बर्बाद करने की वजह अगर कोई बनता है तो उस झूठ को एज अ लोन कंसिडर किया जाता है, और सही वक्त आने पर उस लोन को विथ इंटरेस्ट चुकाना, इसे ही कहते हैं कर्म। इसलिए अपनी जिंदगी अगर खुशहाल बनानी है तो पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाइए और ना ही दूसरों की बातों पर। कल की चिंता छोड़िए और आज को, इस पल को खूबसूरत बनाइए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे ज्यादा सोचना ये काल्पनिक समस्याओं को निर्माण करता है, मींस इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मैंने फिर रफ्ता रफ्ता जिंदगी को समझना शुरू किया, तब पता चला जिंदगी सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई बिछड़ गया तो सब्र,

आपको सबसे ज्यादा राहत देगा। आपको खुद ही अपना मोटिवेशन बनाकर मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बनाना है। और आप यकीन मानिए, जिसने अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगाया है, वो इस दुनिया के पावरफुल लोगों में से एक होता है। वैसे समय हर जख्म को भर देता है, क्योंकि समय हर जख्म की दवा है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन कुछ जख्म हमारे मन में हमेशा रहते हैं, वो हमें दर्द देते हैं, सिखाते हैं और मन से मजबूत बनाते हैं। वैसे खुद के फायदे के लिए कभी दूसरों की भावनाओं से खेला नहीं करते हैं, क्योंकि समय और कर्म हमेशा घूमते रहते हैं। कोई चाहे कितने भी घर बदले, कर्म अपना एड्रेस बराबर ढूंढता है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे मैं खुद कंपटीशन में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि दूसरे मेरे जैसे बन नहीं सकते और मुझे भी औरों की तरह नहीं बनना है। भाई कर्म करते रहो, लोग हाथ से छीन सकते हैं, नसीब से नहीं। वैसे ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है और कभी कभी आंखों में आंसू भी लाती है? सोचिए सोचिए जनाब, वो चीज जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू भी लाती है, वो चीज है याद। क्योंकि रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, रिश्ता बातों में खत्म हो तो आंखों में रहता है, और आंखों में खत्म होने पर वो रिश्ता हमारे मन में रहता है।

0: मैं हूं आरजे भारतीय सीमा और हम आपसे बात कर रहे हैं इस शो पर जिसका नाम है स्वाद का जायका। कहते हैं कि किसी पर बारीक नजर रखने से वो इंसान अच्छे से काम करेगा, ये सोचना कितना गलत है कि नहीं। वो इंसान तब अच्छा काम करेगा जब आप उस पर भरोसा करेंगे। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारे आसपास के लोगों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को जरूर बदल सकते हैं। इसलिए हर बात का जवाब देने की बजाय कभी कभी मौन भी हो जाइए, मतलब शांत रहिए, चुप रहिए। हमारा मन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हमारी परमिशन के बगैर कोई नेगेटिव बात एंटर नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी आवाज कौन सी है? तो सुनिए, दुनिया की सबसे अच्छी आवाज है खामोशी। है ना मजे की बात कि दवाइयां लेने में कोई खुशी नहीं है, लेकिन हमेशा खुश रहने जैसी कोई दवा ही नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आचार्य 90 FM ऐप को डाउनलोड और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और इस शो का नाम है स्वाद का जायका। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं पक्का वादा। हाँ, मैं जाकर वापस आ रही हूँ। अब बातों बातों में और भी बातें होंगी, ये मुलाकात अब दोबारा होगी। जितना समय मेरे पास था उतना ही आपके पास भी था, लेकिन जल्दी ही अब नई मुलाकात जरूर होगी। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको कमिंग सून वाला मेरा बाय बाय।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: आजहरन एनटी एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है ना भाई? सब ठीक होना ही चाहिए क्योंकि स्वाद का जायका इस शो पर बनने वाला खाना और बजने वाला गाना आपको जरूर पसंद आएगा। पिछली बार मैंने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए भाई हमें तो वापस आना ही पड़ता है। अर्ज किया है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आप आए तो खुदा हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं हम क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। बड़ी शिद्दत से हो रहा था आप ही का इंतजार, स्वाद का जायका इस शो पर स्वादिष्ट रेसिपीज की भरमार। आप ही हो ऑडियंस जी, हम दर्द हम निवाला और साथी। आचार्य 90 FM के इस शो पर आपकी मौजूदगी ही है काफी, आप जैसे दोस्तों से ही है खुशहाल ये जिंदगी। सलामत रहे आचार्य 90 FM के दोस्त, ए खुदा सुन ले मेरी बंदगी। वैसे अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम मास अब शुरू हो गया है। इस अधिक मास में सात्विक पद्धति से अनेक काम किए जाते हैं जिसमें भगवान की आराधना और व्रत भी शामिल है। व्रत रखना मतलब उपवास रखना, राइट? और व्रत में बनते हैं कुछ खास व्यंजन। वैसे देखा जाए तो व्रत और साबूदाना ये जोड़ी तो एकदम पक्की है। साबूदाने से बनी खिचड़ी या साबूदाना वड़ा ये सब तो कॉमन रेसिपीज है। भाई गर्मी इतनी है कि तली हुई चीजों से हम थोड़ी दूरी ही बना लेते हैं, तो फिर इस साबूदाने की ऐसी कौन सी रेसिपी को बनाएं जिससे बगैर तले हम आसानी से बना सकते हैं? सोचिए तो, एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में आसान भी हो और स्वाद में भी लाजवाब हो, जिसे देखते ही आपका मन ललचाए और जिसे टेस्ट करते ही आप कहे आए हाय, जो खाने में हो हल्की और पेट पर ना पड़े बल्कि, जिसे खाकर व्रत करने वाले को मिले ऊर्जा और खुश हो जाए घर की सारी प्रजा। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ साबूदाना खीर इस व्रत स्पेशल रेसिपी की। ये एक भारतीय मिठाई है और इसे खास तौर पर व्रत और त्योहारों में बनाया जाता है। साबूदाना खीर का मेन इंग्रेडिएंट है साबूदाना। ये छोटे छोटे मोती की तरह गोल होता है। भारत में इसे टैपियोका नाम के एक पेड़ की जड़ से बनाया जाता है। इसे कसावा या कप्पा भी कहते हैं। भारत में सबसे पहले साबूदाना का उत्पादन तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। वैसे साबूदाना खीर को खाने के लिए आप व्रत रखे ऐसे कुछ नहीं है भाई, हम तो आचार्य 90 FM के हमारे खास ऑडियंस के लिए दोस्ती निभाने के लिए आज साबूदाना खीर बना रहे हैं। एक बार साबूदाना अच्छे से भीग गया तो इसे फटाफट बना सकते हैं और फिर गटागट खा भी सकते हैं। तो चलिए साबूदाना खीर को बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, आधा कप साबूदाना। यहाँ पर हम बड़ा वाला साबूदाना यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो छोटा वाला साबूदाना भी यूज कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए दूध 1 लीटर, चीनी 5-6 चम्मच, इलायची पाउडर 2 चुटकी, केसर के धागे 5-6। इन्हें 1 टेबलस्पून दूध में भिगो कर रखिए। मिल्क मसाला 2 चम्मच या फिर बादाम, काजू और अखरोट सब 2-2। फिर हमें चाहिए पिस्ता 5-6 और पानी। इसके साथ हमें चाहिए ढेर सारा प्यार क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस खीर में उतरने वाली हैं। इस साबूदाना खीर की रेसिपी को सुनने से पहले साबूदाना को साफ पानी से 2-3 बार धो लीजिए, फिर उससे एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। उस साबूदाना में 1 कप पानी डालिए। लगभग 4-5 घंटे बाद वो साबूदाना सारा पानी सोख लेगा। पानी सोखने के बाद साबूदाना का आकार 2 गुना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर साबुदाना में गर्म पानी डालकर उसे कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे तो साबुदाना जल्दी नरम हो जाएगा। अगर आपको साबुदाना झटपट इस्तेमाल करना हो तो आप ये नुस्खा अपना सकते हैं। तैयारी तो हमने कर ली, अब सुनते हैं साबुदाना खीर को बनाने की रेसिपी। सबसे पहले आप एक मोटे बेस वाली कढ़ाई में दूध गर्म कीजिए। जब तक दूध गर्म हो रहा है आप एक गाना सुनिए।
1: फूंक फूंक कर चूल्हा।

ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक

चार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी है, है, है बड़ी

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप दूध को गर्म करते समय गैस की आंच को धीमी गति पर रखिए। हाई फ्लेम पर दूध ज्यादा तेजी से उबलेगा और उसके नीचे गिरने के चांसेस भी होते हैं। लो फ्लेम पर रखने से दूध थोड़ा गाढ़ा भी होगा और खीर का टेक्सचर ज्यादा स्मूथ भी होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब दूध में उबाल आए तब उसमें भिगोया हुआ साबुदाना ऐड कीजिए। एक बड़े चम्मच की मदद से साबुदाना को उसमें मिक्स कीजिए। 2 मिनट के बाद सारा साबुदाना खिला खिला दिखने लगेगा। फिर उसमें डालिए चीनी यानी कि शक्कर और ढेर सारा प्यार भी डालिए। क्यों? क्योंकि आपके मन की भावनाएं उसमें उतरेंगी। इस शक्कर को भी उस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कीजिए। अगले 15 से 20 मिनट तक इस मिश्रण को पकने के लिए रख दीजिए। आपको बीच बीच में चम्मच से इसे मिक्स करना है, चम्मच से दूध को चलाते रहिए। भाई ऐसा करने से क्या होगा? तो सुनिए, ऐसा करने से साबुदाना कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, अदरवाइज साबुदाना कढ़ाई के बेस पर इकट्ठा होकर चिपक सकता है और ऊपर की सतह पर सिर्फ उबलता हुआ दूध ही दिखेगा। तो इस बात का आप जरा ध्यान रखिए। थोड़ी देर बाद नरम और पारदर्शी साबुदाना, मतलब वो जो साबुदाना है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर उसमें मिलाइए खुशबूदार इलायची पाउडर और साथ में भिगोया हुआ केसर। ऐसा करने से साबुदाना खीर से खुशबू तो आएगी ही, साथ ही केसरिया रंग की झलक भी दिखेगी। अब इस केसरिया खीर को 5 मिनट तक और पकाइए। इससे खीर और ज्यादा गाढ़ी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आप चाहे तो इस खीर में 2 चम्मच बारीक रवा मिलाकर पकाइए। वैसे कोई और टाइप की खीर को बनाते समय भी अगर आपने थोड़ा सा रवा उसमें मिलाया तो खीर का टेस्ट और टेक्सचर ज्यादा निखरता है। ये रवा मिलाकर खीर बनाना वैसे ऑप्शनल है, आपको डिसाइड करना है। अब आप गैस को कर दीजिए बंद, क्योंकि खीर को टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आरजे भारतीय सीमा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आप भिगोए हुए बादाम को छुरी की मदद से पतले पतले टुकड़ों में काटिए। इस तरह पिस्ता काजू और अखरोट के टुकड़े भी काटिए। ये तैयार हुआ साबुदाना खीर की डेकोरेशन का सामान। इस खीर को डेकोरेट करने से पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। साबुदाना खीर को सजाने का टाइम आ गया बॉस। इसे सजाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक शानदार बोल। उस बोल में बड़ी नजाकत से साबुदाना खीर को निकालिए। अब डेकोरेशन कैसे करना है इस बात पर जरा गौर फरमाइए जनाब। काजू और बादाम के पतले स्लाइस यूज करके हमें बनाने हैं 5 पंखुड़ियों वाले कुछ फूल। अब इन फूलों के इर्द गिर्द आप पिस्ता के टुकड़ों के 3-3 ग्रुप बनाइए। जैसे गणेश जी की पूजा में जो दुर्वा इस्तेमाल करते हैं वो घास के 3 टुकड़ों वाली, हाँ कुछ उसी तरह से आप पिस्ता के टुकड़ों को इस्तेमाल कीजिए। फिर अखरोट के टुकड़े से आप किनारे को सजाइए। ये डेकोरेशन ऐसे दिखेगा जैसे किसी फ्रेम में सफेद फूल और हरे पत्तों से कोई डिजाइन बना हो, है ना इंटरेस्टिंग बात। अब इस फैंसी साबुदाना खीर का भगवान को लगाइए भोग और फिर क्या, इस टेस्टी और हेल्दी साबुदाना खीर का लुफ्त एकदम मजे से उठाइए। इस साबुदाना खीर की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है सुंदर सी साबुदाना खीर। बात हो रही है मिठाई की, नाम है उसका साबुदाना खीर। दूध के संग मोतियों सा साबुदाना, लागे जैसे रांझे संग हो हीर। इसकी मिठास को बढ़ाने डाली हमने शक्कर, स्वाद है इतना अनोखा कि जंक को दे टक्कर। साबुदाना खीर बनाकर मनाओ अधिक मास, क्योंकि आप ही हो ऑडियंस जी हमारे दोस्त एकदम खास। इस खीर को सजाकर हमने रूप दिया सुहाना, स्वाद का जायका निभाना यही है फर्ज हमारा। साबुदाना खीर की सुंदरता बढ़ाने पेश है ये अंदाज, क्योंकि अधिक मास के व्रत का हो गया है आगाज। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। कहते हैं कि अधिक मास के दौरान सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करना उचित है। अब घर का कोई भी सदस्य अगर व्रत करता हो तो उसके लिए खाना अलग से बनता ही है, जिसमें औरों का भी थोड़ा सा हिस्सा होता ही है कि नहीं। वैसे इस अधिक मास के दौरान जरूरतमंदों को अन्नदान भी किया जाता है। इस अन्नदान का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। वैसे भी खाना शेयर करना मींस खुशियां बांटना है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली रेसिपी की, जिसका नाम है गोंद कतीरा खीर। गोंद कतीरा खीर गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाली एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है। उबलते हुए गाढ़े दूध में इलायची, पोहा और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं और ठंडा होने के बाद इसमें भीगा हुआ गोंद कतीरा मिलाया जाता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गोंद कतीरा एकदम फायदेमंद इलाज है। वैसे गोंद कतीरा हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। इसे पानी में भिगोकर रखने के बाद ये अपने आकार से कई गुना ज्यादा फूल जाता है। फूलने के बाद ये जेली जैसा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। गोंद कतीरा दिखने में सफेद या हल्के पीले रंग के ट्रांसपेरेंट गुच्छे मींस फ्लेक्स के रूप में आता है। इसे फालूदा, शरबत या नींबू पानी में मिलाकर खाया जाता है, लेकिन हम तो इसे खीर में इस्तेमाल करने वाले हैं। गोंद कतीरा खीर बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: गोंद कतीरा 2 बड़े टुकड़े, पोहा 2 बड़े चम्मच, मिश्री मींस खड़ी साखर स्वादानुसार, यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच मिश्री ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए गुलाब जल 1 चम्मच, मिल्क मसाला 1 बड़ा चम्मच या फिर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, पिस्ता वगैरह, ये सब चाहिए 1 या 2 चम्मच। फिर हमें चाहिए केसर के धागे 7 या 8, दूध 4 कप और कॉमन इंग्रेडिएंट मीन्स ढेर सारा प्यार इस खीर में आप जरूर मिलाइए। रेसिपी को सुनने से पहले हम थोड़ी तैयारी करते हैं। सबसे पहले गोंद कतीरा को एक कटोरी भर पानी में भिगो कर रखिए। लगभग 5-6 घंटे के लिए इसे अच्छे से भिगोइए। कुछ समय के बाद गोंद कतीरा को जेली जैसा रूप मिलेगा
उसके बाद क्या करना है? तो भाई उसके बाद एक पैन को कीजिए गरम और लो फ्लेम पर पोहा को अच्छे से भून लीजिए। फिर उस रोस्टेड पोहा को आप ठंडा करने छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट के बाद उस ठंडे पोहा को मिक्सर में घुमाकर उसका पाउडर बना लीजिए। फिर क्या करना है? तो जनाब थोड़े गर्म पानी में बादाम और पिस्ता को 20-25 मिनटों के लिए सोक कीजिए। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सॉफ्ट बन जाए तब छुरी की मदद से उनके पतले स्लाइस बनाइए। अब चलिए गोंद कतीरा खीर को बनाते कैसे हैं ये हम सुनते हैं। सबसे पहले एक मोटे बेस वाले पैन में दूध गर्म करने रख दीजिए। दूध को लो फ्लेम मतलब धीमी आंच पर ही उबालें, नहीं तो दूध में ज्यादा उबाल आ सकता है और वो वेस्ट हो सकता है। लगभग एक घंटे के बाद दूध गाढ़ा बन जाएगा। इस दौरान आप दूध को चलाते रहिए, बीच बीच में दूध को चम्मच से मिक्स कीजिए। जब दूध उबलकर आधा मतलब गाढ़ा हो जाएगा तब उसमें डालिए मिश्री मींस खड़ी साखर, इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें ऐड कीजिए भिगोया हुआ गोंद कतीरा। फाइनली केसर के धागे और थोड़ा सा गुलाब जल भी डालिए। इससे गोंद कतीरा खीर को केसरिया रंग और गुलाब जल की खुशबू मिलेगी। इसे भी आपको अच्छे से मिक्स करना है। अब गैस को कीजिए बंद और इंतजार कीजिए कुछ लम्हे चंद। जब तक इस खीर में गुलाब जल और केसर की खुशबू घुल जाए तब तक आप एक गाना सुनिए।

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। मैं हूं आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। अब इस गोंद कतीरा को डेकोरेट करते हैं। बादाम और पिस्ता के पतले स्लाइस तो हमने तैयार रखे ही हैं। अब एक स्लाइस बादाम का और एक स्लाइस पिस्ता का, ऐसा अरेंज करके आप इस खीर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक सुंदर सा सर्विंग बोल लीजिए, उसमें गोंद कतीरा खीर को डालिए, फिर एक नजाकत से बादाम और पिस्ता का डिजाइन बनाइए। बाद में क्या करना है, तो भाई इस गोंद कतीरा खीर का लुत्फ उठाना है। इस गोंद कतीरा खीर के लिए पेश है एक कविता। कविता का नाम है गोंद कतीरा का फंडा। गर्मी के सीजन में जब शरीर को रखना हो ठंडा, तब आप जरूर आजमाए गोंद कतीरा का फंडा। इसके सेवन से आप पाएंगे राहत और मिठाई खाने की पूरी होगी चाहत। घर में ही मिलेगा गर्मी का इलाज, फिर उसमें मिलाए कुछ देसी अनाज। हर बात पर क्यों अपनाना तुम्हें अंग्रेजीपन, देसी चीजों से झलकेगा कलाकारी दिखाने का फन। जनाब हमारे आयुर्वेद में है बेमिसाल सी ताकत, अपनाओ देसी नुस्खे और गर्मी से पाओ राहत। खाने पर होते हैं तरह तरह के संस्कार, तब जाकर बनते हैं खट्टे मीठे पकवान। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं गोंद कतीरा बनता कैसे है? पौधे के तनों या छाल में कोई कट या प्राकृतिक दरार आने पर गोंद निकलता है। जब ये गोंद हवा के संपर्क में आता है तब ये सूख जाता है। सूखने के बाद ये हल्के पीले या सफेद गुच्छे के रूप में इकट्ठा होता है। ओरिजिनली ये मिडिल ईस्ट इलाके से बिलोंग करता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन इलाकों में ये आसानी से पाया और उगाया जाता है। अपनी ब्यूटी रेजिम में आप गोंद कतीरा को जरूर शामिल कीजिए। ग्लोइंग स्किन के लिए गोंद कतीरा काफी फायदेमंद है। वैसे आप ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कौन सा नुस्खा अपनाते हैं? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। कहते हैं कि खाने से ही शरीर बिगड़ता है और खाने से ही सुधरता भी है। हमारे भारतीय खाने में इतनी शक्ति है कि अगर हम पुराने जमाने वाली खान पान शैली को अपनाएं तो हमारी सेहत अपने आप अच्छी बनेगी। आए दिन बेकरी प्रोडक्ट्स, चिप्स, इंस्टेंट और रेडीमेड खाना खा खा कर हमने अपनी सेहत से खिलवाड़ किया है कि नहीं? अब आप अधिक मास मींस पुरुषोत्तम मास की बात को ही ले लीजिए। अधिक मास में उपवास मींस व्रत रखने के बावजूद भी हम पारंपरिक और होममेड खाना खाकर अपनी सेहत का ख्याल रख ही सकते हैं। कढ़ाई में ढेर सारा तेल गरम करके उसमें पकाया हुआ खाना बार बार खाते रहना कितना सही है। इसलिए आज हमने हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए उपवास स्पेशल साबुदाना खीर बनाई। इस खीर को खाकर आप व्रत और अपनी सेहत दोनों में एक तालमेल बना ही सकते हैं। हमारे नन्हे दोस्त मींस बच्चा पार्टी जो दूध पीने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं वो भी खीर को मजे से एंजॉय करेंगे। आइसक्रीम खाकर ठंडक पाने की बजाय देसी तरीका अपनाना बेहतर है। इसके लिए हमने आपसे गोंद कतीरा खीर की रेसिपी को शेयर किया। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर लिखिए। स्वाद का जायका, स्वाद के जायके से मुझको लुभाती हो तुम, लजीज खाने से दिल पर वार करती हो तुम। मैं कितनी भी कोशिश करूं पर आचार्य 90 FM पर हमेशा मिलती हो तुम। हर सोमवार और शुक्रवार मिलने का ये वादा, आरजे भारती सीमा कभी ना बदलेगी इरादा। खाने और खिलाने की चलती रहे कश्मकश।

साथ ही कुछ चुनिंदे फिल्मी तरानों की पेशकश। ऑडियंस की सेहत का रखना है ख्याल, देसी खाना खिलाकर पूछो सबका हाल। अरे भाई फिकर नॉट, अगली बार भी कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज मैं तो ले ही आऊंगी, लेकिन अब मुझे दीजिए इजाजत। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: शताब्दी ने तब किया था महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया। अब उनका सर वो नेपाल में एक घड़िया रह गया।
1: जय साहब
2: जय हिंद। सृष्टि के जन्म से

0: 많이 나가야 짤만이 멋지면 내가 아슬아슬 이거 말이야 자자자 루스터 자 빨리 빨리 돌아오세요 이거 말이야 이거 빨리 가자 어서 이거 말로 가야
1: अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को बहुत मेहरबान है पैसे नहीं लेंगे दीजिए
2: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता ये लड्डू के बदले न जाने कौन जायदाद मांग लो तुम
3: भाई
2: भाई गलत बात है
0: शाम को मिलता हूँ
3: मेहरबानी करके कुछ कमा के घर भी ले आना सब यात्रियों पे लुटा के मत आ जाना

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की। The girl's got everything. The girl's got everything.

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। कहानियां जो हमें जिंदगी में ऐसे सबक सिखा जाती है जो शायद हम स्कूल में नहीं सीख पाते, अपने पेरेंट्स से नहीं सीख पाते, अपने दोस्तों से नहीं सीख पाते। इसलिए तो जिंदगी में कहानियों का बहुत मतलब है। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उनमें कुछ ऐसी कहानियां होती है जो हमें जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ पर हमारी मदद करती है जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसी एक कहानी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये कहानी का नाम है एक अधूरी सी चाय। मुंबई कभी रुकती नहीं। सुबह के 8 बजे ही रोड्स पर इतनी भीड़ होती थी जैसे पूरा शहर किसी रेस में भाग रहा हो। लोकल ट्रेन्स के दरवाजों से लटके लोग, सिग्नल पर हॉर्न्स के नॉइज, रोड साइड वेंडर्स की आवाजें, और उन सबके बीच एक और इंसान था जो रोज की तरह अपनी लाइफ को धक्का दे रहा था। धीरज शर्मा, 29 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, लोअर परेल के एक बड़े ग्लास बिल्डिंग वाले ऑफिस में सीनियर डेटा एनालिस्ट। पैकेज अच्छा था, पोजीशन भी अच्छी थी, पेरेंट्स प्राउड थे, लिंक्डइन प्रोफाइल इम्प्रेसिव था, पर अंदर से धीरज थक चुका था। उसकी लाइफ एक्सेल शीट्स और डेडलाइंस में उलझ गई थी। हर दिन से सुबह ऑफिस, लैपटॉप, मीटिंग्स, टारगेट्स, लेट नाइट मेल्स, फिर घर जाके थोड़ी देर में मोबाइल स्क्रॉल करना और बिना कुछ फील किए सो जाना। कभी कभी उससे लगता जैसे वो इंसान नहीं मशीन बन गया हो। उसके दिन की सिर्फ एक ही चीज स्पेशल होती थी, 11:15 बजे वाली चाय। ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटी सी चाय की टपरी थी, नाम था टी अड्डा। कॉर्पोरेट इम्प्लॉयज के लिए वो टपरी ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी थी। कोई स्ट्रेस लेकर आता था, कोई गॉसिप, कोई सिगरेट और कोई बस 10 मिनट की शांति। टी अड्डा का ओनर श्यामलाल धीरज को रोज देखकर बिना पूछे ही चाय बना देता, एक्स्ट्रा अदरक वाली, बिना ज्यादा चीनी। सही कहा ना धीरज भैया? हाँ। धीरज कप लेकर साइड में खड़ा हो जाता और बिल्डिंग के बाहर रश देखता रहता। उसे लोग ऑब्जर्व करना पसंद था, कौन खुश है, कौन फेक स्माइल कर रहा है, कौन अंदर से टूट चुका है। कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स इंसान को एक्टिंग सिखाई देती है। और फिर एक दिन सब बदल गया। उस दिन मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी, रोड हाफ फ्लडेड, कैब ड्राइवर्स कैंसिल पे कैंसिल कर रहे थे, एम्प्लॉयज भीगते हुए ऑफिस एंटर कर रहे थे। धीरज यूजुअल टाइमिंग पर चाय लेने ही आया था कि बिल्डिंग के एंट्रेंस पर उसकी नजर गई एक लड़की पर। एक लड़की भागते हुए अंदर आई, ब्लैक कुर्ती, व्हाइट शूज जो बारिश के पानी से ऑलमोस्ट ग्रे हो चुकी थी, हाथ में लैपटॉप बैग, बालों से टपक रहा था और चेहरे पर वो एक्सप्रेशन जो सिर्फ लेट होने वाले एम्प्लॉयज के होते हैं। वो डायरेक्टली चाय स्टॉल पर आई, भैया एक कटिंग चाय प्लीज। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, बिल्कुल अननेसेसरी लाउड नहीं। धीरज ने बस कैजुअली उसकी तरफ देखा, पर पता नहीं क्यों उसकी नजर वापस हट ही नहीं पाई। शायद उसकी आंखें या उसका कामनेस या वो अजीब सी सैडनेस जो उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई थी। लड़की ने चाय ली, कप लिप्स तक ले गई और तभी उसकी नजर धीरज से टकरा गई। सिर्फ 2 सेकंड्स, पर धीरज को जेन्युइनली लगा जैसे आसपास का सारा नॉइज म्यूट हो गया। ना हॉर्न सुनाई दिए, ना लोग, ना बारिश, बस वो आंखें। फिर उसने क्वाइटली नजर हटा ली और बिना कुछ बोले बिल्डिंग के अंदर चली गई। धीरज उसे जाते हुए देखता रह गया। कौन सी कंपनी में होगी, उसने खुद से पूछा, फिर तुरंत अपने पार हंस दिया। क्या कर रहा है तू? पर उस दिन के बाद उसका वो 11:15 सिर्फ चाय नहीं रहा, कुछ और बन चुका था। नेक्स्ट डे 11:12, लग रहा है ना बिग बॉस जैसा, पर ठीक वैसे। धीरज यूजुअली 3 मिनट पहले ही टी अड्डे पर था। खुद को रीजन दिया, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, पर अंदर से वो जानता था वो उसे देखना चाहता है। 11:15 बजे और वो आ गई, सेम काम फेस, आज ब्लू कुर्ती में। उसने चाय ऑर्डर की, 1 सेकंड के लिए धीरज की तरफ देखा, फिर कप लेकर साइड में खड़ी हो गई। आज भी कोई बात नहीं, बस एक
ऑकवर्ड आई कॉन्टेक्ट, फिर अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, स्लोली स्लोली वो दोनों एक दूसरे के रूटीन का पार्ट बन गए। कभी धीरज पहले आता, कभी वो, कभी दोनों एक साथ काउंटर पे हाथ बढ़ाते हुए ऑकवर्डली ओ सॉरी कह देते। एक दिन चाय वाले श्यामलाल ने टीज कर दिया, आप दोनों सेम ऑफिस में हो क्या? दोनों एक साथ बोले नहीं, और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दिए। बस वही पहली बार था जब धीरज ने उसकी स्माइल प्रॉपरली नोटिस की, सिंपल सॉफ्ट और डेंजरस, क्योंकि उस स्माइल ने धीरज के अंदर कुछ स्टार्ट कर दिया था। अब धीरज अननोइंगली उसे ऑब्जर्व करने लगा था। वो लाउड लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती थी, कभी फोन पर अननेसेसरी बातें नहीं करती थी, कभी किसी ग्रुप में गॉसिप करते नहीं दिखती थी, और एक स्ट्रेंज चीज, उसकी आंखों में हमेशा हल्का सा दर्द होता था, जैसे वो फिजिकली मुंबई में हो पर मेंटली कहीं और। एक दिन धीरज मीटिंग में था, बॉस कुछ एक्सप्लेन कर रहा था पर उसका फोकस लैपटॉप स्क्रीन पर नहीं था, उसकी नजर बार बार वॉच पर जा रही थी। 11:13, 11:14, 11:15, 11:16 फाइनली उसने एक्सक्यूज मारा, सर वॉशरूम, और डायरेक्टली टी अड्डा भाग गया। वो ऑलरेडी वहां खड़ी थी, उसने कैजुअली बोला आज लेट हो। धीरज फ्रीज, ये उन दोनों की पहली लाइन थी। उफ, मीटिंग थी, बस इतना। पर उस में भी धीरज को वियर्ड हैप्पीनेस फील हुई, मतलब उसने नोटिस तो किया। उस रात धीरज घर जाके अनयूजुअली हैप्पी था, माने भी नोटिस कर लिया, क्या बात है आज मूड अच्छा लग रहा है। बस ऑफिस का स्ट्रेस कम था, पर स्ट्रेस कम नहीं हुआ था, बस उसकी लाइफ में पहली बार कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, और उस इंटरेस्टिंग चीज का नाम था वो अननोन चाय वाली लड़की, जिसका नाम अभी तक उसे पता नहीं था, लेकिन उसे ये बिल्कुल पता था कि ये 11:30 वाली चाय उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तो दोस्तों, देखा हमने कि किस तरीके से 11:15 वाली चाय, जो धीरज की जिंदगी में एक अपना अलग मुकाम बना चुकी है, और कैसे दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें हुई। अब इसके आगे वाली जो कहानी है वो सुनते हैं एक ब्रेक के बाद।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे धीरज की कहानी चाय वाली, एक अधूरी सी चाय, एक अधूरी सी मोहब्बत। देखते आगे, मुंबई की बारिश और कॉर्पोरेट लाइफ में एक सिमिलैरिटी होती है, दोनों कब स्टार्ट हो जाए और कब रुक जाए कोई गारंटी नहीं। उस दिन भी वेदर डिपार्टमेंट ने लाइट शॉवर्स बोला था और रियलिटी में लोअर परेल ऑलमोस्ट डूब चुका था। ऑफिस के बाहर एम्प्लॉइज शेल्टर के नीचे खड़े थे, किसी की कैब कैंसिल, कोई बॉस को एक्सक्यूज दे रहा है, कोई शूज बचाने की कोशिश कर रहा है, और उन सबके बीच धीरज बस एक चेहरा ढूंढ रहा था। 11:15 हो चुके थे। टी अड्डा के पास अनयूजुअल साइलेंस था, शायद आज नहीं आएगी। उसने चाय का कप उठाया और एंट्रेंस की उसने चाय का कप उठाया ही था कि एंट्रेंस का गेट खुला और वो अंदर आई, कंप्लीटली भीगे हुए। ब्लैक अम्ब्रेला हवा में उल्टा हो चुका था, हेयर चीक से चिपक गए थे और आंखों में इरिटेशन। भैया एक गरम चाय जल्दी, धीरज के लिप्स पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई, पता नहीं क्यों उसे उसका आना अच्छा लगने लगा था, शायद बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था। रिद्धि चाय लेकर साइड में खड़ी हुई थी कि थंडर हुआ, वो हल्की सी डर गई। धीरज ने नोटिस किया, तुम बिजली से डरती हो? उसने इंस्टेंटली उसकी तरफ देखा, तुमने पहली बार डायरेक्टली तुम बोला? धीरज ऑकवर्ड हो गया, आप। रिद्धि हंस पड़ी और उसकी वो हंसी धीरज को जेन्युइनली पीसफुल लगने लगी थी। रिलैक्स, मुझे फॉर्मल लुक पसंद नहीं। धीरज भी हंस दिया, शायद वो पहली बार उसे फील हुआ कि ऑकवर्डनेस डिसॉल्व हो रही है। बारिश और तेज हो गई, रोड्स पर पानी भर गया, कैब्स एप्स क्रैश होने लगे। रिद्धि बार बार फोन चेक कर रही थी, नो कैब्स अवेलेबल, ग्रेट। धीरज इंटरनली 10 मिनट से बैटल कर रहा था कि ऑफर कर दूं कि कहां ड्रॉप करूं। फिर मन ही मन सोचने लगा, नहीं ऑकवर्ड लगेगा। फिर अंदर से तीसरे धीरज ने बोला, अबे कर दे। फिर चौथे धीरज ने बोला अंदर ही, नहीं नहीं मत बोलना। फाइनली उसने हिम्मत की, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मेरी अम्ब्रेला बड़ी है, मैं मेट्रो स्टेशन तक तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा 2 सेकेंड्स तक, जैसे इवैल्यूएट कर रही हो, फिर सॉफ्टली बोला, ओके, बस एक ओके।

रिद्धि हंस पड़ी और उस मोमेंट पर धीरज ऑफिशियली गया दिल से कंप्लीटली। मेट्रो स्टेशन आ गया, रिद्धि रुक गई, थैंक्स, वरना मैं तो आज डूब ही जाती, एनी टाइम, धीरज रिप्लाइड। वो मुड़कर अंदर जाने लगी, फिर सडनली रुककर बोली, कल 11:15 बजे। धीरज स्माइल के बिना रह नहीं पाया, पक्की बात। और उस रात पहली बार बहुत टाइम बाद धीरज जेन्युइनली हैप्पी सोया। अब 11:30 सिर्फ चाय ब्रेक नहीं रहा, वो उन दोनों का अनऑफिशियल मीटिंग टाइम बन चुका था। कभी कटिंग चाय, कभी समोसा स्प्लिट करना, कभी ऑफिस गॉसिप, कभी रैंडम लाइफ टॉक्स। धीरज को स्लोली रियलाइज हुआ, रिद्धि बाकी लोगों जैसी नहीं थी, वो अननेसेसरली लाउड नहीं थी, फेक नहीं थी, और सबसे अलग चीज, वो सुनना जानती थी। आजकल लोग रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, पर रिद्धि समझने के लिए सुनती थी। एक दिन धीरज ऑफिस फ्रस्ट्रेशन वेंट कर रहा था, यार ये कॉर्पोरेट जॉब्स ना इंसान को रॉबोट बना देती है। रिद्धि कामली चाय सिप करते हुए बोली, तुम छोड़ दो, सैलरी तुम दोगी, पीस फ्री होती है। धीरज उसे देखता रह गया। कभी कभी उसकी सिंपल लाइन सीधा दिल में घुस जाती थी। एक दिन धीरज ने कैजुअली पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? रिद्धि ने विंडो के बाहर देखा, सबको लाउड लोग ही पसंद होते हैं क्या? नहीं, पर तुम्हारा साइलेंस भी काफी लाउड है। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और चुप हो गई। शायद काफी टाइम बाद किसी ने उसे जेन्युइनली नोटिस किया था। अब लेट नाइट टेक्स्ट भी स्टार्ट हो गए थे। रीच्ड होम, हाँ, डिनर स्किप, अच्छा नहीं है। तुम डॉक्टर हो? नहीं, फ्यूचर डायबिटीज पेशेंट। रिद्धि ने लाफिंग इमोजी भेजा और धीरज स्क्रीन देखकर स्माइल करता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कब उसकी आदत प्यार बन गई, पर एक चीज क्लियर थी, वो रिद्धि के बिना अपना दिन इमेजिन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, प्यार एक डेंजरस चीज होती है। जब तक दिल में हो सेफ लगता है, पर जब जुबान तक आता है सब बदल देता है। धीरज ने फाइनली डिसाइड कर दिया था, आज बोलूंगा। पूरी रात उसने प्रैक्टिस की, मिरर के सामने, फोन नोट्स में, माइंड में, हार्ट में। नेक्स्ट डे टी अड्डा अनयूजुअली चुप लग रहा था। रिद्धि यूजुअल कॉर्नर पर खड़ी थी, कोल्ड कॉफी सिप करते हुए। धीरज का हार्ट लिटरली रेस कर रहा था। रिद्धि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिद्धि सीरियस हो गई, हाँ बोलो। धीरज ने डीप ब्रीथ ली, पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, बट आई थिंक आई एम इन लव विद यू। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। रिद्धि उसे देखती रही, ना शॉक ना स्माइल, बस आंखों में दर्द, डीप दर्द। फिर स्लोली उसने कप टेबल पर रखा और धीरज से बोली, धीरज आई एम विडो, बस एक लाइन, और धीरज की दुनिया फ्रीज। उसके दिमाग में सिर्फ वो वर्ड इको हो रहा था, विडो विडो विडो। रिद्धि ने आंखें नीचे कर ली, शादी को सिर्फ 11 दिन ही हुए थे, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। धीरज कुछ बोल नहीं पाया, पर उसके अंदर का जो इमोशंस थे वो सैलाब बन चुके थे। प्यार, शौक, फियर, सोसाइटी, फैमिली, सब एक साथ, सबके सब एक साथ। रिद्धि उसकी आंखों में कंफ्यूजन देख चुकी थी, इसलिए वो सॉफ्टली बोली, सोके धीरज, तुम आंसर मत दो, और वो वहां से चली गई। धीरज वहीं खड़ा रह गया, कप में चाय ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल उसकी हिम्मत की तरह।

वेलकम टू आचार्य 90 FM। हम सुन रहे थे रिद्धि और धीरज की कहानी। एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहाँ पे रिद्धि ने उसे अपना सच बताया और धीरज काफी शौक था। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। उस कन्फेशन के बाद सब चेंज हो गया। धीरज कॉल्स अवॉइड करने लगा, टेक्स्ट ड्राई हो गए, चाय ब्रेक्स स्किप होने लगे और रिद्धि सब समझ गई। एक दिन उसने डायरेक्टली पूछा, तुम डिस्टेंस बना रहे हो? धीरज चुप रहा। मैं समझ सकती हूँ रिद्धि, मैं सोसाइटी टफ होती है धीरज, स्पेशली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। ये लाइन उसके दिल में सीधा घुस गई, पर फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाया। और वही उसकी सबसे बड़ी नाकामी थी। एक मंडे मॉर्निंग रिद्धि ऑफिस नहीं आई, ना ट्यूसडे ना वेनसडे। फिर पता चला उसने रिजाइन कर दिया, विदाउट गुड बाय, विदाउट क्लोजर, बस चली गई। और उसके बाद टी अड्डा फिर से चाय स्टॉल बन गया। रिद्धि के जाने के बाद धीरज की लाइफ मैकेनिकल हो गई। मीटिंग्स मीनिंगलेस लगने लगी, सैलरी पॉइंटलेस लगने लगी। एक दिन उसने लैपटॉप बंद किया और रेजिग्नेशन मेल भेज दिया। सब शॉक्ड, पागल हो गया है, करियर बर्बाद मत कर। पर धीरज मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट की, मनाली, कसोल, शिमला। और शिमला जाके उसे याद आया रिद्धि ने कहा था, माउंटेन्स सुकून देते हैं, माउंटेन्स हील करते हैं। और सच में शिमला में उसने वही फील किया और वही उसने डिसाइड किया कि वो शिमला में एक कैफे खोलेगा। कॉर्पोरेट बंदा कैफे ओनर बनेगा। सब हंसे पर धीरज सीरियस था। उसने सेविंग्स लगाई, लोन्स लिए, खुद टेबल स्पिन किए, खुद कॉफी बनाना सीखा, खुद मेन्यू लिखा। 3 साल स्ट्रगल किया। ऑफ सीजन में बहुत सारे लॉस हुए, टूरिस्ट का वेट किया, पर फाइनली शिमला के एक हिल पॉइंट पर एक ब्यूटीफुल कैफे उसने खड़ा किया। और कैफे का नाम था हाफ कप कैफे। नाम इंटेंशनली रखा गया क्योंकि उसकी लव स्टोरी भी अधूरी रह गई थी। कैफे कोजी था, वुडन वॉल्स थे, फेरी लाइट्स थी, सॉफ्ट ओल्ड सॉन्ग्स और एक बालकनी जहां से पूरा वैली दिखता था। हर स्नोफॉल में धीरज को रिद्धि की याद आती, हर चाय कप में उसकी कमी फील होती, पर लाइफ जैसे तैसे चल रही थी या शायद बस कट रही थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी शायद धीरज ने अपनी जिंदगी में कल्पना नहीं की होगी या धीरज ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। दिसंबर वाली स्नोफॉल, कोल्ड हवा, टूरिस्ट फोटो ले रहे थे, कैफे में ओल्ड सॉन्ग चल रहा था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। धीरज काउंटर पर बिल्स चेक कर रहा था, तभी एंट्रेंस बेल बजी, टिंग टिंग। उसने कैजुअली ऊपर देखा और उसका हार्ट लिटरली स्टॉप हो गया। रिद्धि, व्हाइट स्वेटर, ओपन हेयर, सेम आईज, बस थोड़ी और खामोश, दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। 5 साल 1 सेकंड में डिसॉल्व हो गए। रिद्धि धीरे से बोली, तुम? धीरज के लिप्स ड्राई हो गए। तुम्हें शिमला पसंद था ना? रिद्धि नम हो गई। दोनों कैफे के कॉर्नर टेबल पर जा बैठे। आउटसाइड स्नोफॉल हो रही थी, इनसाइड साइलेंस थी। फिर रिद्धि बोली, मैंने सुना था तुमने कॉर्पोरेट लीव कर दिया। हाँ, क्यों?
धीरज उसकी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि वहां सब था बस सुकून नहीं था। रिद्धि चुप हो गई। धीरज ने फाइनली वो लाइन बोली जो 5 साल पहले बोलनी चाहिए थी। मैं डर गया था रिद्धि, पता है, पर तुम्हारे जाने के बाद समझा कि लोग क्या कहेंगे से ज्यादा डेंजरस होता है खुद को खोना। रिद्धि और ज्यादा नम हो गई। बहुत लेट कर दिया तुमने। धीरज हल्का सा हंसा। माउंटेन्स तक पहुंचने में टाइम लगता है। रिद्धि हंस पड़ी आंसुओं के बीच, और वही इमोशनल मोमेंट था जहां 5 साल पुरानी अधूरी कहानी फिर से सांस लेने लगी थी। स्नोफॉल और तेज हो गया। धीरज उसे कैफे बालकनी में ले गया। पूरा शिमला व्हाइट ब्लैंकेट में कवर था, येलो लाइट्स, कोल्ड हवा, और बीच में वो दोनों। धीरज धीरे से बोला, इस बार मैं नहीं डरूंगा। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारे पेरेंट्स? 5 साल पहले मैं परमिशन ढूंढ रहा था, और अब सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहा हूं। रिद्धि रो पड़ी। वो आंसू सच वाले आंसू थे, वो आंसू हील वाले आंसू थे, रिलीफ वाले थे। धीरज ने स्लोली उसका हाथ थामा, और इस बार छोड़ने के लिए नहीं। कभी कभी प्यार पहली बार में कंप्लीट नहीं होता, उसे वक्त लगता है। इंसान को मैच्योर होने में वक्त लगता है, डर से लड़ने में वक्त लगता है, पर अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन शिमला की किसी स्नोफॉल में वो दोबारा मिल ही जाता है। और इस बार अधूरी चाय फाइनली पूरी हो जाएगी। उस इतना धीरज ने कहा, और रिद्धि ने उसे तुरंत हाँ कह दिया। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ फैसले लेने में वक्त तो लगता है, जैसे कि किसी एक शायर ने कहा था और लिखा था, जिसका एक मशहूर गाना भी बना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं है उसके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो इसी वक्त तो लगता है के साथ हम आपसे अभी लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले शो पर, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दोबारा आपसे मिलूंगा, तब तक अपनी जिंदगी में कहानियां ढूंढते रहिए। बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों की गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आजादी के पहले की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आजादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तां। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने, सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल लेता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम, रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है।
आनंद धीरे से बोला, अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हिमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का

था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता, उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने। अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, ये अल्लाह क्या हुआ? अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना? अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहते। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा? हम कैसे चैन से जी पाएंगे? हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे? हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे? हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे? अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी। उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है? अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है, जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है, जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, गुप्त मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखें गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खोल उठा, उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी, वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद, आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी, सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो?
हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा। क्रांति में लोग कहानियां नहीं लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया। नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका। तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून तुकते हुए हंस पड़ा। फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद, अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा,

अमित ने उसका कंधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी, वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग, आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले आनंद, आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में 3 माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी। अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती, जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून 1 आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर
शहीद हो गए। हंसकर मौत को स्वीकारा, ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके। जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होंगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

कसो असा? हाउ आर यू ऑल? भाई गर्मी से तो सबका ही एकदम खराब हाल है। अब इस गर्मी की मार को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं जिनमें अच्छी रेसिपीज और कुछ अपनापन भी हो। तो फिर चलिए ऐसी रेसिपी सुनाते हैं जो सुपर फूड होने के साथ साथ फेमस रेसिपी भी है। पहले आप मुझे बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फूल, जो पवित्रता, सौंदर्य, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, उसका नाम क्या है? ये कीचड़ भरे तालाबों में उगता है लेकिन फिर भी निर्मल होता है। ये स्टेडी वाटर मतलब रुका हुआ पानी तालाब और कीचड़ में उगता है। इस फूल की पंखुड़ियों पर पानी नहीं रुकता। ये जीवन की चुनौतियों के बीच भी पवित्र रहने का प्रतीक है। इसे डेकोरेशन, मेकअप और मेडिसिन्स में भी यूज करते हैं। वैसे माता लक्ष्मी इसे अपना आसन बनाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में इसे पद्म के नाम से जाना जाता है। कुछ याद आ रहा है? कश्मीर में इस खूबसूरत फूल के तने से नदरू नाम की सब्जी बनती है। यस, सही गेस किया आपने। मैं बात कर रही थी कमल के फूल के बारे में, लेकिन हमारी आज की रेसिपी इस कमल के फूलों के बीज से बनने वाली है। आमतौर पर इसे मखाना या फॉक्स नट्स मींस कमल के बीज के नाम से जाना जाता है। ये एक सुपर फूड ही नहीं, एकदम फेमस सुपर फूड है। इसे मेनली बिहार के तालाबों और झीलों में उगने वाले कांटेदार पौधों से पाया जाता है। वैसे दुनिया का 85% मखाना तो हमारे बिहार में ही पाया जाता है। लो कैलोरी और हाई फाइबर वाला ये मखाना एंटी एजिंग होता है। इसे खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। क्या आपने इसे घी रोस्ट करके कभी खाया है क्या? एकदम टेस्टी टेस्टी स्नैक आइटम है ये जनाब। तो चलिए आज हम एक फेमस मिठाई बनाते हैं जिसका नाम है मखाना खीर। आप इसे व्रत या किसी खास मौके पर 15 से 20 मिनटों में बना सकते हैं। वैसे कैल्शियम और प्रोटीन से भरी ये मखाना खीर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों ही देगी। हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम आज इसे बना रहे हैं। मखाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। मखाना 2 कप मींस अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 grams। फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर। देसी घी 2 चम्मच। चीनी 1/2 कप या स्वादानुसार। इलायची पाउडर 2 चुटकी। चॉप ड्राई फ्रूट्स 2 बड़े चम्मच। मुनक्का 1 चम्मच। 2 चम्मच दूध में भिगोए हुए केसर के धागे 8 से 10। और ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली है। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। एक कढ़ाई में घी को गर्म कीजिए, फिर उस घी में धीमी आंच पर मखानों को भून लीजिए। थोड़ी देर मतलब 4-5 मिनटों में मखाने क्रिस्पी होंगे। उन गर्म मखानों को ठंडा करें और मिक्सर में पीस लीजिए। ध्यान रहे मखानों को पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है। इसे जाड़ा जाड़ा मींस दरदरा पीस लीजिए। फिर एक मोटे बेस वाले बर्तन में दूध को उबालिए। फिर उसे कुछ टाइम के लिए लो फ्लेम पे पकाइए। लगभग 10 मिनटों के बाद वो दूध गाढ़ा बनने लगेगा। अब इस गाढ़े से दूध में सारे ड्राई फ्रूट्स और केसर वाला दूध ऐड कीजिए। इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाइए। थोड़ी देर बाद मखाना खीर एकदम गाढ़ी और मलाईदार होगी। फिर इसमें शक्कर, इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर रेसिपी में आप ढेर सारा प्यार ऐड कीजिए। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरेंगी और खाने वाला इसे महसूस करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। अगर सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में हल्का भूनकर आप इस खीर में डालेंगे तो मखाना खीर और ज्यादा टेस्टी बनेगी। फिर इस मखाना खीर को एक सुंदर से बर्तन में निकालिए। फिर भगवान को इस खीर का भोग लगाइए और लुत्फ उठाइए इस टेस्टी मखाना खीर का। वैसे ये मखाना खीर अगर आप मिल बांट कर मींस शेयर करके खाएं तो इसका टेस्ट और ज्यादा निखर कर आता है। यकीन ना आए तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे इस मखाना खीर को आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। गर्मियों में गर्म खाने की बजाय ठंडा खाना अच्छा लगता है कि नहीं?

से आपको खीर के साथ क्या खाना अच्छा लगता है? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं स्वाद का जायका ऑन आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। पेश है खीर की तारीफ में एक छोटी सी कविता। दूध कढ़ाई में जब खोले तब धीमी आंच पर मखाना डोले, मम्मी जब खीर बनाए इलायची की खुशबू छाए, मखाना दूध और शक्कर का मेल, टेस्टी ड्राई फ्रूट से सचता ये खेल, ठंडी ठंडी मीठी मीठी मन को ललचाए ये खीर रसीली। व्रत त्योहार या मेहमान आए हर मौके का स्वाद बढ़ाए, इसे खाकर खिला मन का कमल, मखाना खीर से माहौल गया बदल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हमारे भारत देश में खाना खिलाने के लिए हम बहाने ढूंढते ही रहते हैं, है कि नहीं? यहाँ तरह तरह के लोग और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड हमेशा ही मिलता है। हमारे इस स्वाद का जायका शो पर हम आपको इनकी दोबारा से पहचान कराएंगे। बैक टू बेसिक्स, क्योंकि आप हमारे खास दोस्त हैं और दोस्ती पक्की करने के लिए खाना खिलाना एक अच्छा तरीका है। कहते हैं कि रिश्तों के नाम भी अजीब है, आप सिर्फ ऑडियंस ही नहीं अपनों जितने करीबी हैं। इस बात पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम और बातें करेंगे।

वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। हमारी अगली रेसिपी है पान का मीठा शरबत। वैसे खाना खाने के बाद पान का बीड़ा खाना अच्छा होता है, पान का पत्ता खाना। वैसे इस पान के पत्ते पर सौंफ, गुलकंद, थोड़ी इलायची डालकर आप कभी खाकर देखिए जनाब, इतनी टेस्टी मिठाई खाने की फीलिंग आएगी कि पूछो मत। पान बीड़ा को एक माउथ फ्रेशनर के रूप में खाया जाता है। कहते हैं कि इस पान के पेड़ पर सांप होते हैं, इसलिए पान के पत्तों को खाने से पहले उसका आगे का और पीछे का हिस्सा तोड़ना जरूरी है, क्योंकि सुबह की ओस की बूंदे ड्यू ड्रॉप्स को ये सांप चाटते हैं, तो हो सकता है कि वो पत्ते हमारी सेहत पर बुरा असर डाले। तो इस रिस्क से निपटने के लिए हम पान का आगे का और पीछे का हिस्सा तोड़ते हैं। वैसे ये पान के पेड़ घनी छाया और ठंडक देते हैं। पान के पत्तों को हम पूजा में भी यूज करते हैं। तो आइए हम और आप दोनों मिलकर बनाते हैं पान का शरबत। पान का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पान के पत्ते मींस बीटल लीफ 2, इसका आगे का और पीछे का थोड़ा सा हिस्सा आप तोड़ दीजिए। वजह तो मैंने बता दी है क्यों। गुलकंद 1 चम्मच, भिगोया हुआ गोंद कतीरा 1 चम्मच, गोंद कतीरा मतलब डिंक, सौंफ 1 चम्मच, भिगोया हुआ सब्जा 1 चम्मच। सौंफ को आप रात भर पानी में भिगो कर रखिए। इसे यूज करते समय इसका पानी हटा दीजिए। सेम विद सब्जा सीड्स, मतलब सब्जा सीड्स को भी रात भर भिगोइए, सुबह उसका एक्स्ट्रा पानी हटाकर सिर्फ फूले हुए सब्जा को आपको यूज करना है। इसके अलावा हमें चाहिए ठंडा दूध 1/2 कप, ठंडा पानी 1/2 कप। अब हम इस टेस्टी शरबत की रेसिपी सुनते हैं। मिक्सर के एक जार में पान के पत्ते, गुलकंद, सौंफ, ठंडा दूध, ठंडा पानी, इन सारी चीजों को अच्छे से घुमाइए। 2 मिनट के बाद लाइट ग्रीन कलर का मस्त शरबत तैयार होगा। फिर इस शरबत को एक सुंदर से सर्विंग ग्लास में निकालिए। उसमें भिगोया हुआ गोंद कतीरा मींस डिंक और सब्जा डालकर चम्मच से मिक्स कीजिए। अब अपने मुखड़े पर एक प्यारी सी स्माइल लाइए। पान के शरबत की छवि को अपने मोबाइल कैमरा में बंद कीजिए, फिर इसका लुफ्त उठाइए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे ये पान का शरबत आपका शरीर और दिमाग, इन दोनों को ठंडक का एहसास दिलाएगा, और ये सब करना गर्मी में बेहद जरूरी है। इस पान शरबत की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हरियाली शरबत। पान का शरबत देखकर याद आई हरियाली, पान का शरबत देखकर याद आई हरियाली, जैसे बागों की छांव में नाचे नार मतवाली। गर्मी के सीजन में खुद से ही हो रहा युद्ध, तो पियो ग्लास फुल खान पान वाला दूध। इसे पीकर तुम हो जाओ कूल, टेस्ट है इतना प्यारा कि गर्मी को जाओगे भूल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आपसे बात कर रही हूँ इस शो पर जिसका नाम है स्वाद का जायका। वैसे स्वाद और जायका ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। दे आर फ्रेंड्स। इन दो शब्दों में छोटा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि स्वाद को हम अपनी टंग से मींस अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं, जैसे खट्टा, मीठा या नमकीन स्वाद, और जायका हमें उस स्वाद का अरोमा मींस महक यानी खुशबू और टेम्परेचर बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर का स्वाद मीठा होता है, राइट? लेकिन बर्फी का जायका उसमें इस्तेमाल की हुई केसर, इलायची और जायफल जैसी चीजों से पता चलता है। इन शॉर्ट, स्वाद एक घटक है, जबकि जायका एक कंप्लीट खाने का एक्सपीरियंस है। है ना इंटरेस्टिंग बात? वैसे ये जो शेफ होते हैं, उनके हाथों से बना खाना मतलब एक जादू सा लगता है कि नहीं? और उसके आगे घर के खाने को हम ध्यान नहीं दे पाते। वैसे शेफ बनना कोई आसान बात तो है नहीं जनाब। स्वाद के बादशाह, रसोई के सरताज, हर निवाले में जादू, हर रिश्ते में ताज, उलझने दिल को सुलझाएं स्वाद के नए रस से। रसोई का कलाकार अपनी कला में प्रवीण, दिल का रिश्ता बनाता है खास अपने हुनर से। इनके हाथों का खाना खाकर
दिल को मिले सुकून, अदब से पूछे हाल हमारा और खाना बनाए जो हुकुम। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछूं? क्या आपके हाथों का जायका आपकी स्माइल से भी अच्छा है क्या? क्या बात! वैसे आपके हाथों का खाना ना सही, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल ही मेरे लिए काफी है। कहते हैं कि इफ कुकिंग इज एन आर्ट, तो हर डिश के पीछे एक आर्टिस्ट होता है और हर घर में एक फूड आर्टिस्ट तो होता ही है। बच्चों के टिफिन को रेडी करना, सबका नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, त्योहार स्पेशल खाना, उपवास स्पेशल खाना, बीमार फैमिली मेंबर के लिए अलग सा डाइट फूड, ऐसी अनगिनत टाइप का खाना बनाना कितना मुश्किल है। मुझे तो ये लिस्ट सुनकर अभी से टेंशन हो रही है। इसलिए तो हम खाना खिलाने वाले उस व्यक्ति को अपना ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड दिखा ही सकते हैं। वैसे आप हर रोज किसके हाथों से बना खाना खाते हैं? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो भाई, खाना खाने के बाद करे तो क्या करे? आप चाहे तो खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं, या फिर धीरे धीरे टहल सकते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमिए फिरिए, कुछ नहीं तो अपने घर में ही 10-12 राउंड लगाइए, फिर देखिए कितना अच्छा फील होता है। आज हम बात करेंगे भारत के फेमस सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर की। शेफ संजीव कपूर का फेमस डायलॉग है, नमक स्वाद अनुसार। इन्होंने भारतीय खाने को इंटरनेशनल पहचान दी है। खान पान क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए शेफ संजीव कपूर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एशिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कुकरी शो, जिसका नाम था खाना खजाना, इस शो के माध्यम से शेफ संजीव कपूर घर घर में फेमस हुए। इंडियन डेलिकेसीज, उसमें स्पेशली पंजाबी स्टाइल खाने को वो एकदम आसान मेथड से बनाना सिखाते थे। उन्होंने कुकिंग से रिलेटेड किताबें भी लिखी है। उनकी फेमस डिश का नाम है शाम सवेरा डिश। इस रेसिपी को बनाते समय पालक के कोफ्ते के अंदर पनीर भरा होता है और इस पालक पनीर कोफ्ते को टमाटर और काजू की रिच ग्रेवी में परोसा जाता है। वाओ! वैसे नवंबर 2017 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड फूड इंडिया इस शो में शेफ संजीव कपूर ने लगभग 1000 किलो के करीब वजन की खिचड़ी पकाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इस खिचड़ी को पकाने के लिए उनके साथ 50 शेफ की एक टीम भी थी। इंडिया गेट न्यू दिल्ली एरिया में ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। हमें नाज है ऐसे खान समय पर, जिसने अपने हाथों के जादू से कुकिंग को एक विशेष पहचान दी है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो।

बैक टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। मैं हूँ आजय भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे गर्मियाँ तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का तो नाम ही नहीं, और ऐसे में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि आप पानी पीते रहिए। प्यास लगेगी तब पानी पिया जाएगा, ऐसे मत सोचिए। हर एक दो घंटे बाद पानी पीते रहना अच्छी आदत है। वैसे घर का बना ताजा खाना हमें थ्रू आउट द ईयर खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस गर्मी वाले सीजन में होममेड ताजा खाना हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। गर्मियों में डीप फ्राइड, स्पाइसी और फास्ट फूड से आप जरा दूर ही रहिए। चाय, कॉफी और बहुत ज्यादा मीठी चीजों से आप बचे। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, बाप रे बाप, फिर क्या खाना चाहिए? आप ककड़ी और दही का रायता खाइए। वाटरमेलन, मस्कमेलन का सेवन हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। मैंगोस को एक घंटे के लिए ठंडे पानी में डुबा कर रखिए। ऐसा करने से उसकी हीट थोड़ी कम होगी, फिर आप उसे भी खा सकते हैं। नींबू पानी, गन्ने का रस और कोकम शरबत पीने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। रूम टेम्परेचर वाली लस्सी या फिर छाछ हमारे पेट को शांत रखती है। आम पना मीन्स कैरी का शरबत हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे समर सीजन में कुछ लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, राइट? भाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है? बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सभी आइसक्रीम प्रेमी होते हैं। लेकिन क्या आइसक्रीम सचमुच हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है? क्या आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में जब विंटर सीजन होता है तब वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? जब बर्फ गिर रही हो और उन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखना हो तब वो लोग खाते हैं आइसक्रीम। जी हाँ, ठीक सुना आपने। फॉरेन कंट्रीज में जब हैवी स्नोफॉल होता है तब वहाँ के लोग आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, क्योंकि आइसक्रीम की तासीर गर्म होती है। आइसक्रीम जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तब उसे पचाने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है और इस प्रोसीजर में हीट जनरेट होती है। इसीलिए तो आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर बाद हमें जोरदार प्यास लगती है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। बाय द वे, व्हाट इज योर हेल्थ मंत्रा टू बीट द हीट? वैसे फ्रिज का ठंडा खाना हमारी सेहत पर कुछ अच्छा असर नहीं करता। इट इज क्वाइट अनहेल्दी ऑप्शन। फ्रिज के खाने को आप रूम टेम्परेचर पर लाकर खाएं तो थोड़ा ठीक है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गर्मी के सीजन में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, क्योंकि सनराइज जल्दी होता है और सनसेट थोड़ी देर से होता है। तो क्यों ना हम भी सुबह जल्दी उठकर अच्छा सा और हेल्दी सा जायकेदार नाश्ता करें। अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी हो तो दिन भर एनर्जी महसूस होती है। Am I right? वैसे इस साल 21 जून 2016 को ग्रीष्म संक्रांति है, वर्ष का सबसे लंबा दिन और छोटी रात। तो आप इस खास दिन को क्या खाकर सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में जून के महीने में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है? जी हाँ, मैं आम्र महोत्सव की बात कर रही हूँ। इस फेस्टिवल में आप जरूर जाइए। फलों के राजा की विविधता का जश्न आप दिल खोल कर मनाइए। इस आम्र महोत्सव में 100 से ज्यादा वैरायटीज के मैंगोज का एग्जीबिशन होता ही है। साथ ही आम से बने अनेक व्यंजनों का लुत्फ आप आराम से उठा सकते हैं। मोस्टली दिल्ली, लखनऊ, पटना और रायपुर में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसी फेमस वैरायटीज के अलावा कुछ रेयर वैरायटीज को भी मैंगो फेस्टिवल में एग्जिबिट किया जाता है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हमारे देश में मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन मीन्स आम खाने की प्रतियोगिता भी काफी

फेमस है। वैसे बिहार के मधुबनी में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में मुकुल मिश्रा नाम के व्यक्ति ने 5 मिनट में 32 आम खाकर रिकॉर्ड क्रिएट किया था। मिथिला मैंगो फेस्टिवल में एक हाथ से आम खाने का वीडियो काफी वायरल हुआ था। वैसे गर्मी के सीजन में आप एक या दो आम हर रोज खा ही सकते हैं। विटामिन सी से भरा ये आम फल हमारी स्किन और इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल है। वैसे 24 घंटे सिर्फ आम खाने का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, लेकिन एक प्रिकॉशन आप जरूर लीजिए। आम को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। आम का मुरब्बा, आम का अचार, आम पापड़ या कुछ और, आपको आम से बनी कौन सी रेसिपी खास लगती है? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। इस आम की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है आम। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, भर डालिया तो मुझे भी खिला दे, लूंगा तेरा नाम। बहुत बड़ी है बगिया तेरी, छोटा मेरा पेट, और पेट से भी छोटा है मेरे मुंह का गेट। घबरा मत, खा पाऊ में बगिया भर के आम, न दे टॉफी न दे बिस्किट, दे बस केवल आम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन कर दे इस बगिया मेरे नाम। इस प्यारी सी कविता के कवि है श्री शिवचरण चौधरी जी। भाई, हमारे खास ऑडियंस से आज हमने आम बातें तो कर ली। आपको हमारा आज का शो कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमें जरूर बताइए। और अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइए। हमारे देश की और विदेशों की रेसिपीज को सुनने के लिए, उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को एंजॉय करने के लिए स्वाद का जायका जरूर सुनिए एवरी मंडे एट 1 PM एंड एवरी फ्राइडे एट 4 PM। हमने आपके साथ अपॉइंटमेंट रखी है। आप इस शो में शामिल होकर स्वाद का जायका सुनिए और कुछ मनपसंद गीत भी गुनगुनाइए। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का। ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं बल्कि पक्का वादा, हम आपसे दोबारा मिलने जरूर आएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: pero un grande Chris.
1: Arjun.
2: ¿Tú?
1: Arjun.
2: Oh, mira. ¿Qué mal es así, Arjun?
0: ¿Cómo que nace rey yo?
1: Porque tú Jennifer Lopez की तरह डांस करती हो. क्योंकि यहाँ तुमसे सुंदर कोई नहीं है.
2: ये थोड़ा सा अच्छा झूठ है.
1: क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ. कल मेरे लिए बहुत खुशी
2: है.
1: अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? कल मेरा यूएस कॉन्सुलेट में इंटरव्यू है वीजा के लिए. बस 6-8 हफ्ते और मैं यहाँ से सीधा अमेरिका.
2: मैं घर जा रही हूँ. कानपुर. कल दुल्हन देखने आ रहे. अच्छी नो मैं दूल्हे को देख रही हूँ.
3: For more entertainment, log on and subscribe to www.

पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलने का किया था वादा, आपसे दोस्ती निभाने का भारतीय सीमा का इरादा। स्वाद का जायका इस शो के ऑडियंस को आरजे भारतीय सीमा का प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। काई हाल है थारा भाई, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। अब का बताएं भाभी, गर्मी ने तो सबकी हालत ही बेकार कर दी है। हमें तो बड़ी दिक्कत सी हो रही है, पर का करें, हमारे प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाने हमें आना ही पड़ता है। वैसे अच्छा गाना और टेस्टी खाना, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब रोज रोज क्या बनाए ये तो बड़ी मुश्किल है, राइट? इस सवाल का तो जवाब किसी के पास नहीं होता, तो क्यों ना आज हम आचार्य 90 FM के ऑडियंस के लिए कुछ जुगाड़ रेसिपीज बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि गर्मियों में सिंपल और होममेड खाना खाने से हमें दिन भर फ्रेश फील होता है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी सुनने के लिए, जिसका नाम है गुलाबी दही। गुलाबी दही, इस नाम को सुनकर आपको हो रही एक्साइटमेंट को मैं हमारे स्टूडियो में भी फील कर सकती हूँ। वैसे देखा जाए तो ये रेसिपी, गुलाबी दही को आप एज अ योगर्ट यूज कर सकते हैं। जब गर्मी ज्यादा बढ़े और कुछ खाने का मन ना हो, तब आप ये जुगाड़ रेसिपी बना ही लीजिए। हम सब जानते ही हैं कि सुबह के टाइम दही खाना हेल्दी होता है, क्योंकि दही से पेट शांत रहता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण मीन्स हमारे नटखट कान्हा, उनको भी दही, दूध और मक्खन खाना बेहद पसंद है। वैसे आपकी ब्यूटी रेजिम में आप दही खाना ऐड करें तो आपके बालों और स्किन को पोषण मिलेगा। तो चलिए हम और आप मिलकर खेलते हैं, कौन बनाएगा पिंक दही। हमारी पहली रेसिपी है पिंक दही। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश दही 2 बड़ी कटोरी, कद्दूकस किया हुआ गाजर 4 चम्मच, ग्रेटेड कैरेट्स, ग्रेटेड बीटरूट 4 चम्मच, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली हैं। शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, वैसे यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए थोड़ी सी कोतमीर, अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच। वैसे हमारे नन्हे ऑडियंस इस पिंक कर्ड को एकदम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये नॉन फायर रेसिपी है और मजे से एंजॉय भी कर सकते हैं। पिंक दही को बनाने के लिए एक बर्तन में फ्रेश दही लीजिए, उसमें शक्कर नमक को अच्छे से मिक्स कीजिए, इसमें ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। फिर उस दही में ग्रेटेड बीटरूट और गाजर को ऐड कीजिए। 1 चम्मच की मदद से गाजर और बीटरूट को उस दही में मिक्स कीजिए। अब जैसे ही आप मिक्स करना शुरू करेंगे, उसमें सुंदर सा पिंक कलर देखना शुरू हो जाएगा। अब इसमें बारीक कटी हुई कोतमीर डालकर डेकोरेशन कीजिए। हो गया। आप चाहे तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पिंक कर्ड को एक सुंदर से कांच की कटोरी में सर्व कीजिए। अगर आपके पास मिट्टी की कटोरी है तो उसमें भी ये पिंक दही आप सर्व कर सकते हैं, इससे उसका लुक और ज्यादा अच्छा होगा। आप सिंपल दाल चावल, खिचड़ी, रोटी या सब्जी के साथ भी इस पिंक दही का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे बिरयानी पुलाव के साथ ये पिंक कर्ड अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। कुछ नहीं तो सिंपल रोटी का रोल बनाकर आप इस पिंक दही के साथ खाकर देखिए जनाब। ऐसा इंस्टेंट जुगाड़ आपको और आपके अपनों को हेल्थ बेनिफिट्स ही देगा। इस पिंक दही को देखकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। थाली पीठ या फिर पराठे के साथ इस पिंक दही की जोड़ी तो एकदम सुपर हिट साबित होगी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। आज के इस शो में हम इसी टाइप की कुछ और जुगाड़ रेसिपीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पेश है इस पिंक दही की खिदमत में छोटी सी कविता। कविता का नाम है गुलाबी दही। जनाब एक बार बनाकर देखिए आप ये गुलाबी दही, पहला निवाला खाकर जरूर कहेंगे वाओ एकदम सही।
कॉम्बिनेशन अनोखा सा, बीटरूट, गाजर और दही। हेल्दी खाना है ये, सोचने की जरूरत ही नहीं। दही खाने से पेट एकदम फिट, गाजर और बीटरूट की जोड़ी बन गई सुपरहिट। अच्छा खाना खाकर पहले बनाओ सेहत, फिर जरूर रंग लाएगी आपकी कड़ी मेहनत। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे मेकअप करना सारी लेडीज को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में मेकअप को संभालना मुश्किल होता है। हमारी आज की रेसिपी मींस पिंक दही को खाने से आपकी स्किन पर एक ग्लो आएगा, मींस 24/7 मेकअप है कि नहीं। वैसे सुंदरता सच्चाई की मुस्कान है, जब वो परफेक्ट आईने में अपना रंग दिखाए। और सच्चाई यही है कि हम आचार्य 90 FM के ऑडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब दोस्ती निभाना है जो हम कर रहे हैं। वैसे आपके हाथों से बनी वो कौन सी रेसिपी है जो आपके दोस्त को ज्यादा पसंद है? भाई मुझे तो मेरे दोस्तों के घर पे बनने वाला ट्रेडिशनल खाना बहुत पसंद है। अब चलिए आज हम बात करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस सिंगर आशाताई भोसले की। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि गाने के अलावा अपने हाथों से खाना बनाना और उसे औरों को खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आशाताई उस इंटरव्यू के दौरान जीरा, धनिया और सौंफ से बने एक मसाले का जिक्र कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि आशाताई एक रेस्टोरेंट चेन की ओनर थी? आशाज नाम के इन रेस्टोरेंट्स के 10 आउटलेट्स मिडिल ईस्ट और यूके में हैं। जितनी मीठी आशाताई की आवाज है उतनी ही टेस्टी रेसिपीज को बनाना आशाताई जानती थी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आशाताई की बताई एक स्पेशल मसाला बनाने की रेसिपी सुनेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम बात कर रहे थे आशाताई की। वैसे पैकेट वाले रेडीमेड मसाले तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन घर पर अपने हाथों से बनाए गए मसालों में अपनेपन की एक महक होती है जनाब। तो चलिए आज हम एक नॉन स्पाइसी टाइप का टेस्टी मसाला बनाने की रेसिपी आपको सुनाते हैं। इस होममेड मसाले को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सादा जीरा 1/2 किलो, बड़ी शेप मींस सौंफ यानी वरियाली 1/2 किलो, धनिया बीज 1/2 किलो। अब हम इस नॉन स्पाइसी मसाले को बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक कढ़ाई में जीरा लीजिए, लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर उसे अच्छे से भूनिए। ध्यान रहे उसे क्रिस्पी बनाना है, ना कि जलाना है। अब इस रोस्टेड जीरा को एक बड़ी प्लेट में फैला कर रखिए। इसी तरह से सौंफ और धनिया को भी आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। जब जीरा, धनिया और सौंफ पूरी तरह से ठंडे हो जाए तब उनको मिक्स कीजिए। अब मिक्सर के एक जार में इसे पीसकर इसका फाइन पाउडर बनाइए। जब आप इसे बनाना शुरू करेंगे तब पूरा घर इस मसाले की खुशबू से महक उठेगा। आहा, बिल्कुल आशादाई की आवाज की तरह खिल उठेगा। अब इस इंस्टेंट मसाले को आप एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए। इस मसाले को स्टोर करने के लिए अगर कांच का कंटेनर आप यूज करें तो ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इससे उस मसाले की फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओल्ड रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस नॉन स्पाइसी मसाले को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो भाई, आप आशाताई स्टाइल की भरी हुई भिंडी की सब्जी बना सकते हैं। पहले तो भिंडी को अच्छे से धो लीजिए, फिर इसको वर्टिकल मींस सीधे टुकड़ों में काटिए, मतलब लंबा लंबा काटिए। फिर उन टुकड़ों को हल्दी, नमक और ये नॉन स्पाइसी मसाला लगाइए। एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कीजिए, फिर लो फ्लेम पर मसाला लगाई हुई भिंडी के टुकड़े डालिए। फिर उस पैन पर ढक्कन रखकर 5 मिनट तक उसे पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे मिक्स कीजिए। वापस उस पे ढक्कन लगाकर 2-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाइए। इस तरह से क्रिस्पी भिंडी फ्राई तैयार। गर्मियों में चिप्स या जंक फूड खाने की बजाय आप ये क्रिस्पी भिंडी खाएं और अपनी सेहत बनाएं। वैसे छाछ, कचुम्बर या फिर सैलेड में भी आप ये नॉन स्पाइसी मसाला यूज कर सकते हैं। हर रोज बनने वाली सब्जी या दाल में भी आप ये नॉन स्पाइसी मसाला 1 या 2 चम्मच भर के ऐड कर सकते हैं। वैसे इंदौर स्टाइल पोहा में सौंफ यूज होती है, राइट? तो अगली बार पोहा बनाते वक्त आप ये नॉन स्पाइसी मसाला डाल कर देखिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी अगली जुगाड़ रेसिपी एक महाराष्ट्रियन सब्जी है जिसका नाम है हुड़ा भाजी। हुड़ा भाजी ये एक नॉन फायर टाइप की रेसिपी है। वैसे हुलगा, हुड़िद, इनकी भाजी को भी हुड़ा भाजी के नाम से जाना जाता है। जिस हुड़ा भाजी की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए इसकी रेसिपी सुनने। हुड़ा भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: स्प्रिंग अनियन मींस हरी प्याज यानी कि पातीचा कांदा। इसे धोकर किसी साफ कपड़े से इसका पानी पोछिए, फिर इसके बारीक टुकड़े कीजिए। इस तरह से कटी हुई प्याज हमें चाहिए 2 बड़ी कटोरी भर के। फिर चाहिए नमक स्वादानुसार, लेकिन यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, कच्चा तेल 4-5 चम्मच, दैट्स इट। अब हम सुनते हैं इस हुड़ा भाजी को बनाने की रेसिपी। सबसे पहले बारीक कटी हुई हरी प्याज को नमक और मिर्ची पाउडर लगाकर 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। इससे नमक और तीखेपन का स्वाद उस सब्जी में अच्छे से मिक्स होगा। फिर उसमें कच्चा मींस अनकुक्ड यानी सादा तेल बिना गरम किए ऐसे ही मिक्स कर दीजिए। इस तरह से तैयार हो गई है हमारी जुगाड़ रेसिपी जिसका नाम है हुड़ा भाजी। अब आप इसे ज्वार की रोटी के साथ मजे से खाइए। वैसे महाराष्ट्र के गांव में इसे कंफर्ट फूड के नाम से जाना जाता है।
जब मुंह में बेस्वाद सा टेस्ट हो या फिर कभी आपको खाना खाने का मन ही ना करे, तब आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए। लगभग 10 से 15 मिनट में रेडी होने वाली ये जुगाड़ रेसिपी आपको स्वाद का जायका जरूर याद दिलाएगी, क्योंकि हमारे दोस्तों की सेहत का ख्याल रखना यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। वैसे पुराने जमाने में बाहर से खाना ऑर्डर करने का सिस्टम तो था नहीं, तब ऐसा जुगाड़ करके अपनी फैमिली के लिए खाना बनाया जाता था। वैसे इंस्टेंट मींस 2 मिनट्स टूडल से कहीं ज्यादा हेल्दी तो हमारी जुगाड़ रेसिपीज है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को बदलने की। भाई वो कहते हैं ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, अब समझदार को इशारा ही काफी है। देसी फूड खाओ और अपनी सेहत बनाओ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारती सिंह। वैसे जुगाड़ रेसिपीज को बनाते वक्त गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से किसी जबरदस्त रेसिपी को बनाते समय मेरे से कंफर्म गड़बड़ तो हो ही जाती है। वैसे मोस्ट ऑफ द डैडी लोग नौसिखिए बच्चों को किचन के काम सीखने के लिए सपोर्ट करते ही है, नो डाउट। लेकिन उस वक्त नौसिखिए कुक की मम्मी अलर्ट मोड पर एक्टिव हो जाती है। आई एम श्योर आप मेरे इस बात से सहमत हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर मुझ जैसे नौसिखिए अपने अंदर की कलाकारी दिखाने घर के किचन में VIP एंट्री मारते हैं। तब हमारी हर हरकत पर रिएक्शन होती है, आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए जब मम्मी कहीं और गई हो तब मैं किचन में घुसती हूँ। अब मैं आपको एक रीसेंट किस्सा सुनाती हूँ। फ्रिज में जमी ढेर सारी मलाई देखकर मैंने होममेड घी बनाने का डिसाइड किया। इस प्रयोग को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैंने YouTube पर देसी स्टाइल में घी बनाने का वीडियो 5-6 बार देखा। फिर सुबह सवेरे 5 बजे के शुभ मुहूर्त पर हमने किचन में एंट्री मारी। लगभग 1 kg मतलब 1 किलो मलाई में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसे चर्नर से मिक्स करना था, और ये मिक्स करने का प्रोसीजर अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 मिनट के लिए चलने वाला था, और मिक्सर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना था। लेकिन हुआ यूं कि 5 मिनट में ही मेरा पेशेंस खत्म हो गया और मेरे हाथों में दर्द होने लगा। इसलिए मैंने एक हाथ से मलाई वाले उस बर्तन को टाइट पकड़ा, दूसरे हाथ में चर्नर पकड़कर चम्मच की तरह उसे मलाई वाले बर्तन में घुमाना स्टार्ट किया। अगले 5 मिनट में फिर से मैं थक गई, फिर मैंने लेफ्ट हैंड से चर्नर को घुमाना स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद मैंने डिसाइड किया, सेल्फ डिक्लेयर किया कि जो है जैसे है वो यही है और यही ओके है। फिर मैंने उस बर्तन से लगभग 1 लोटा छाछ निकाल कर साइड में रख दी, और बचे हुए सो कॉल्ड बटर को एक कढ़ाई में डालकर गैस पर पकाने के लिए रख दिया। अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट में ही उसमें से जलने की स्मेल आने लगी, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया। लगभग आधी कटोरी घी जो गोल्डन कलर का था उसे मैंने उस बर्तन से निकाला, सुनहरा घी। फिर बचे हुए मक्खन को दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफर किया, क्योंकि पहली वाली तो जल गई थी। अब उस दूसरी कढ़ाई को भी मैंने गैस पर चढ़ाया, उस कढ़ाई में से भी जलने की स्मेल आने लगी। इस प्रोसीजर में सुबह के 11 बज गए, मतलब टोटल 6 घंटे वेस्ट हुए। फिर थककर मैंने घी बनाने का एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दिया। इस अनोखे प्रयोग के दौरान हमारे किचन प्लेटफॉर्म पर बर्तनों का ढेर जमा हो गया, और इस प्रकार हमारा मिशन देसी घी जस्ट पास मींस जैसे तैसे सफल हुआ। उस वक्त अगर हमारी मम्मी जी वहां पे मौजूद होती तो फिर तब का नजारा कुछ और ही होता। तब पटाखों की लड़ी से सारा घर गूंज उठता, और अगले कई दिनों तक उसकी गूंज मुझे महसूस होती। जोक्स अपार्ट, वैसे मुझ जैसे नौसिखिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके ही एक दिन महान इंसान बनने वाले हैं, है कि नहीं। वैसे आपकी मम्मी का फेवरेट वेपन कौन सा है जिससे वो आपकी धुलाई करती है? यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, हम जल्दी ही वापस आएंगे।

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब पेश है मम्मी जी के किचन वाले गुस्से पर एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है मम्मी जी का किचन। हमारे किचन की क्वीन मेरी मम्मी, इनके हाथों का खाना मतलब वाव और यम्मी। जब किचन में करती हूँ मैं वीआईपी एंट्री, तब महाप्रसाद मिलना ये बात है कॉम्प्लीमेंट्री। किचन में होते हैं कुछ नए से प्रयोग, तब जोरदार भाषण का होता है संयोग। मम्मी जी को किचन लगता है एकदम प्यारा, एक्सपेरिमेंट करने का मेरा शौक है कितना न्यारा। जब किचन में होता है कोई विशेष गोलमाल, तब मम्मी जी से सुनिए अनोखे से सुर और ताल। देखकर मम्मी जी की मतवाली आंखें, बावरा सा मन मेरा यहाँ वहाँ भागे। किचन के एक्सपेरिमेंट से मचता है शोर, लेकिन हम है इतने ढीठ के होते ही नहीं बोर। अब चाहे जो भी हो, हूँ तो मम्मी जी की बेटी, किचन से ही लाऊंगी स्वाद के जायके की पेटी। आई एम श्योर ये कविता सुनकर हमारे ऑडियंस को कुछ अनोखे किस्से जरूर याद आ रहे होंगे। वैसे ये किचन में कुकिंग वाले एक्सपीरियंसेस एकदम यादगार ही होते हैं। भाई बेसिक कुकिंग तो हम सबको आनी ही चाहिए। नूडल्स और सैंडविचेस खाकर हम बोर होंगे, तब कुछ और सोचना ही पड़ेगा ना। इसलिए आचार्य 90 एफएम योर ओन रेडियो पर स्वाद का जायका जरूर सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सैंडविच से मुझे याद आया कि चीज बनाने वाली फेमस कंट्रीज में फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में मिलने वाली चीज की वैरायटीज के बारे में कुछ अनोखी बातें मैं बताने वाली हूँ। कलारी जम्मू और कश्मीर का एक लोकल और ट्रेडिशनल हिमालयी पनीर है, जिसे यूजुअली जम्मू का मोजरेला या हिमालयन चीज कहा जाता है। भैंस के दूध से बना ये कलारी चीज मोजरेला चीज जैसे ही होता है। वैसे पिज्जा और पास्ता मेकिंग में मोजरेला चीज का यूज होता है। कलारी चीज पकने के बाद ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और चिपचिपा सा होता है। कलारी चीज का टेस्ट थोड़ा खट्टा और सॉल्टी होता है। वैसे कलारी कुलचा इस फेमस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट कलारी चीज ही है। भाई हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में भी टोपलीनो पनीर मिलता है, जिसे सूरती चीज के नाम से जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के पारसी कम्युनिटी का ये एकदम स्पेशल और ट्रेडिशनल पनीर है।

टोपिनो पनीर, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे टोपली मींस बास्केट में बनाया जाता है और इस वजह से इस पर जालीदार निशान होते हैं। टोपलिनो पनीर की स्पेशलिटी ये है कि इसे ताजा ही बनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस देसी पनीर की तारीफ की है और इसे लोकल से ग्लोबल बताया। इसे मोस्टली मुंबई और सूरत के पारसी घरों में बनाया जाता है। सुबात छे सरस। इंडियन चीज इज मेकिंग इट्स मार्क ग्लोबली। अब हम बात करेंगे छुरपी पनीर की। याक के दूध से बना ये ट्रेडिशनल और न्यूट्रिशियस पनीर ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र, स्पेशली नेपाल, सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। छुरपी पनीर दो टाइप की होती है। एक होती है सॉफ्ट वाली, जो सूप और करी में यूज होती है। दूसरी होती है एकदम हार्ड वाली, जिसे चबाना मुश्किल है और ये कई वर्षों तक खराब नहीं होती। ज्यादा ठंडी वाले इलाके में गर्मी पाने के लिए छुरपी पनीर का इस्तेमाल होता है। वैसे क्या आपने कभी पनीर पानी पूरी खाई है क्या? नहीं। वैसे पनीर आइसक्रीम भी होती है, यकीन नहीं आ रहा है? ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी अगली जुगाड़ रेसिपी एक महाराष्ट्रीयन डिश है, जिसका नाम है फोड़नीची पोड़ी, मींस तड़के वाली रोटी। अक्सर ऐसा होता है कि रोटियां बची हैं और सब्जी खत्म हो गई, तब करे भी तो क्या करे। ऐसे वक्त पर करना पड़ता है जुगाड़, ऐसा जुगाड़ जिससे सब्जी भी ना बनानी पड़े और रोटियां भी वेस्ट ना हो, तब हम बना सकते हैं फोड़नीची पोड़ी। अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक सिंपल सा तड़का लगाकर रोटियों का लुक और टेस्ट बदला जा सकता है। तो चलिए अब हम फोड़नीची पोड़ी या फोड़नीची चपाती की रेसिपी सुनते हैं। सपोज आपके किचन में अप्रोक्सीमेटली 6 रोटियां बची हैं, ओके? तो सबसे पहले आप इन रोटियों के छोटे टुकड़े बनाइए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, सारी रोटियों का रोल बनाइए। उस रोल को चाकू की मदद से पतला पतला काटिए, मतलब लंबा लंबा, जिससे रोटी के टुकड़े नूडल टाइप दिखेंगे। अब एक प्याज बारीक टुकड़ों में काटिए, मींस कांदा काटिए। एक कढ़ाई में तेल या घी को गरम कीजिए, फिर हमें उसमें तड़का लगाना है, इसलिए गरम तेल में चुटकी भर राई, जीरा, बारीक कटी हुई थोड़ी लहसुन, कड़ी पत्ता डालकर भूनिए, उसको गुजराती में बोलते हैं वघार लगाना। फिर उसमें हींग, थोड़ी हरी मिर्ची और कांदा डालिए। 2 मिनट तक इसे पकने दीजिए। आप चाहे तो टमाटर काट कर इसमें डाल सकते हैं। फिर रोटी के टुकड़े और स्वादानुसार नमक डालिए। सब चीजों को अच्छे से मिलाकर उसे पकने दीजिए। फिर उस कढ़ाई पे ढक्कन रखिए, तभी आपको लो फ्लेम पे 2-4 मिनट तक उसे पकाना है। उसमें थोड़ी कोतमीर से गार्निश कीजिए। फिर एक प्लेट में फोड़नीची पोड़ी को दही के साथ सर्व कीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपको सुकून ही देगा, ना रोटियां वेस्ट हुई ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ओके? हमारी आज की जुगाड़ रेसिपीज आपको कैसी लगी है हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे बची हुई रोटियों से फोड़नीची पोड़ी तो हमने बना ली, अब मान लीजिए सफेद चावल बचे हैं, तब क्या करें? अरे भाई फिकर नॉट, सेम स्टेप्स फॉलो करके आप फोड़नीचा भात मींस तड़के वाला चावल भी बना सकते हैं। अब एक और जुगाड़ रेसिपी मैंने आपको इंस्टेंट तरीके से बता दी है। अब लास्ट में हम एक और जुगाड़ रेसिपी सुनते हैं। ये महाराष्ट्रियन और कर्नाटकी स्टाइल का झटपट बनने वाला एक नाश्ता है। सिर्फ 10 मिनटों में ही हम इसे बना सकते हैं और इस नाश्ते वाली रेसिपी का नाम है सुशीला। ये ठीक सुना आपने, इस रेसिपी को सुशीला कहते हैं। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। सुशीला बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कुरमुरा 4 कटोरी, तेल 2 बड़े चम्मच, कच्चा सेंगदाना 1/2 कप, राई और जीरा 1/2 चम्मच, हींग चुटकी भर, कड़ी पत्ता 15 से 20 पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1 या 2, बारीक कटा हुआ कांदा 1, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक और शक्कर स्वादानुसार, नींबू का
का रस और कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। एक बड़ी छलनी में सारे कुरमुरे डालिए। एक मिनट के लिए इसे पानी से धोइए, फिर उसका पानी हटाइए। अब हमें तड़का लगाना है। एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, सिंगदाना और हरी मिर्ची डालिए। बाद में उसमें प्याज मींस कांदा डालिए। आप चाहे तो बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। फिर हल्दी डालकर उसे मिक्स कीजिए। फाइनली भीगे हुए कुरमुरे, नमक और शक्कर डालिए। लगभग 2-3 मिनट के लिए उस पर ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर पकाइए। अब कोथमीर और नींबू रस के साथ सुशी ला को गार्निश कीजिए। चाय के साथ आप ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक सुशीला का लुत्फ उठाइए। है ना इंस्टेंट जुगाड़ रेसिपी। भाई, आपने हमारे आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। अगर नहीं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं दोस्तों, दिल जीत भी लेते हैं और चीर भी देते हैं। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलने का ये मेरा वादा, नहीं सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।